आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। ज्ञान, संस्कार और अच्छे कर्म जीवन की सबसे उज्जवल ज्योति है। यह प्रकाश हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल कर सही राह दिखाता है।

हवा की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने उत्साह और उम्मीद को कभी मत रुकने दीजिए। इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: నిలయంలో సమయం సరిగ్గా 6 గంటలు కావస్తుంది. మరి కొద్దిసేపట్లో హిందీలో, తదనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మై జయా భారతి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए. श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत

0: और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएँ जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. President of North Macedonia, Gordana Silonovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Senior BJP leader, Union Minister JP Nadda, has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well guys, welcome back to Akashvani FM Rainbow 101.9 with me RJ Ramcharan. So I was saying that about, you know, have you ever, you know, came to know that and before mobile phones, and I said already, kabhi aapne socha kya aisa without mobile phones, will that work? Yes. So today, whenever we need information, we simply, hum kya karte? We'll open Google, of course. बस दो सेकेंड्स और आंसर हमारे सामने. यस आई सर यू यू नो व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट समथिंग इन गूगल इट गिव्स लाइक दैट इन टू सेकेंड्स. सो इफ़ यू वांट टू टॉक टू समवन, समझो आपको आपको किसी को बात करने का है, किसी से बात करने का है, वी मेक अ वीडियो कॉल राइट. इफ़ यू वांट एंटरटेनमेंट वी हैव मेनी ऑप्शंस, वी ओपन आर यूट्यूब और any OTT platform, of course, ye to chalte rahega. This is the time because that's the reason. So we are, you know, having other alternative things. It is so easy today, of course. But imagine life nearly 100 years ago. Think around 100 years ago. We are in 2026. Think like in 1926 or 1920s actually. There is no smartphones, na Wi-Fi, na Instagram, of course. ना फेसबुक और ना ही ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल नोटिफिकेशंस. जो भी है वी डोंट हैव यू नो अबाउट 100 ईयर्स अगो कम्युनिकेशन वॉज, तो वो टाइम पे कम्युनिकेशन कम था. इट वॉज टू स्लो एक्चुअली. लेटर्स टुक डेज समटाइम्स इवन वीक्स एक्चुअली. न्यूज़पेपर्स अराइव्ड ओनली वंस ए डे. और अगर कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती थी तो उसे हर इंसान तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगता था. यस वो टाइम वो ज़माने पे 100 ईयर्स बैक इट वॉज टू यू नो डिफिकल्ट एंड हार्ड टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन टू अस. यस सो बिफोर गेटिंग इनटू मोर अबाउट नोइंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन 1920s बिफोर 100 ईयर्स वी लिसन टू एन अमेजिंग ट्रैक एंड वील कम बैक. डोंट गेट अवे, स्टे विथ मी ऑन 101.9.

0: 101.9.
1: So welcome back guys, and you're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9 with me, RJ Ramcharan. I was just telling you a situation and scenario which happened, you know, the farmer and all. और इसी वजह से ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ब्रॉडकास्टिंग कैन एक्चुअली चेंज लाइव्स, बिकॉज वी ट्रांसफॉर्म द थिंग्स. द जर्नी हैज जस्ट बिगन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. अभी तो हमने सिर्फ कहानी का पहला पेज खोला है, ठीक है. इट्स जस्ट स्टार्टेड. विल ट्रैवल बैक टू 1923 एज ए सेट 100 ईयर्स बैक व्हेन अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट इन बॉम्बे planted the seed of Indian broadcasting. We'll discover more and more for sure. और लोग पहले बार रेडियो के आवाज़ सुनकर इतने हैरान क्यों हुए गए थे. So don't go anywhere. Stay tuned to Akashvani FM Rainbow 101.9 with me, RJ Ramcharan. Before that, let's listen to this amazing track.

वेलकम बैक दोस्तों, एंड यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 विथ मी योर आरजे रामचरण. एंड एट दैट टाइम इन 1923 इन बॉम्बे, एज आई सेड, फ्यू पीपल स्टार्टेड दिस एंथुजियास्टिक एंड द यू नो बेस्ट पार्ट विच हैपेंड. देन आवर पहला ब्रॉडकास्ट उस टाइम पे वो लिमिटेड वर्शन था, जो भी वो यू नो उस जमाने 1920 टाइम पे दैट वॉज अ लिमिटेड वर्शन एंड छोटा भी, और लिसनर्स बहुत भी कम है, और क्योंकि एक रेडियो सेट को खरीदना नामुश्किल है. यस रियली, लेकिन यहाँ एक ब्यूटीफुल चीज़ हुए. व्हेन वन पर्सन बॉट ए रेडियो द होल नेबरहुड वांटेड टू हियर इट. अब मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, ठीक है. एक बिजनेसमैन ने रेडियो सेट

को खरीद लिया। जब आजू बाजू वाले बोला, अरे सुना है उनके घर के एक मशीन आए हैं जो हवा से गाना सुनाते हैं। हाउ वॉज दैट वेन वी लिसन दिस? पीपल गैदर, चिल्ड्रन स्टैंड नियर द डोर, एल्डर्स सिट क्वाइटली एंड सडनली अ म्यूजिक स्टार्ट्स प्लेइंग फ्रॉम द रेडियो। कैन यू इमेजिन दैट रिएक्शन वेन यू आर लिसनिंग इन 1923? एक्चुअली इट्स नॉट इन 2026, यू नो। फॉर अस साउंड कमिंग फ्रॉम अ स्पीकर इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बट दैट्स समथिंग अमेजिंग एक्चुअली। सो उन लोगों के लिए इट वॉज अनबिलीवेबल, बिकॉज इट्स अ सेट ऑफ अ स्मॉल इक्विपमेंट, जो भी आपका ये यू नो रेडियो सेट जो भी है, इट वॉज अ स्मॉल वन, राइट? मैनी पीपल जेन्युइनली वंडर्ड, इज समवन हिडन इनसाइड दिस बॉक्स ऑफ वॉट? दैट वॉज अ बेस्ट पार्ट विच हैपेंड। सम थॉट इट वॉज अ मैजिक एंड सम सिंपली सैट देयर विद देयर माउथ्स ओपन लिसनिंग इट विद एन अमेजमेंट। क्या चल रहा है यहाँ पे? यू नो समवन टॉकिंग इन अ सेट, यू नो इन अ रेडियो सेट, वो डब्बे में कैसा बात क्यों कैसा आ रहे हैं वो? दैट वॉज द बेस्ट अमेजिंग थिंग विच हैपन इन 1923 वैन दैट पर्टिकुलर बिजनेस मैन स्टार्टेड ऑफ यू नो बाइंग अ रेडियो सेट एंड he started off doing this, right? So before knowing more and getting into more in 1920s and 1923s and 36 actually, let's listen to this amazing track and we'll get back to you.

101.9. चलो वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 विद मी योर आचे रामचरण. सो हम बात कर रहे हैं दोज डेज इन 1923, राइट, 1936, विच वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, राइट. सो वो टाइम पे टेक्नोलॉजी जब नई होती है ना, तो वो मैजिक ही लगता है, राइट. जस्ट थिंक अबाउट टूडेज वर्ल्ड, व्हेन पीपल फर्स्ट सॉ वीडियो कॉल्स, एआई टूल्स, अ वर्चुअल रियलिटी, मेनी रिएक्टेड विद द सेम काइंड ऑफ सरप्राइज, बिकॉज उस जमाने पे, वो टाइम पे, इट्स 1923 व्हेन दैट वाज स्टार्टेड, यू नो द रेडियो वाज स्टार्टेड, दैट वाज ऑफकोर्स नहीं होता है. लाइक वी हैव व्हेन वी केम टू नो अबाउट सम एआई टूल्स, चैट जीपीटी एंड अदर थिंग्स, देन द सेम थिंग हैपेंड एट देयर. Every generation has its own. How is this even possible? Right? Because everything is human made and created actually. So for the people of 1920s, the movement was radio. That particular movement was of course the radio. So well, dosto, I just want to tell you one thing. Just think about that particular moment when you are in 1920s. Just imagine, you know, hum ye what do we call machine mein, when we go back to 1920s and at that particular time, how do you feel at that time? That was amazing, right? If you get a time machine to get back to 1920s and all, so that will be the best moment where how this happened. We'll also come to know that, right? So we'll take a short break and we'll get back to you.

सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। मैं हूं आपका दोस्त आजे रामचरण। एंड व्हाट अ वंडरफुल जर्नी दिस हैज़ बीन सो फार। आई थिंक यू आर स्टेइंग विद मी ऑन 101.9 टू नो मोर अबाउट ये वाला हिस्ट्री। अब तक हमने जाना कि ब्रॉडकास्टिंग की कहानी इंडिया में एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट से शुरू हुए थे थ्रू द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इन 1923। ठीक है, दैट एक्सपेरिमेंट प्रूव वन थिंग, ब्रॉडकास्टिंग वॉज पॉसिबल इन इंडिया, शुरू हुआ है। चलो, बट एवरी एक्सपेरिमेंट नीड्स अ बिगर विजन, यू नो वी हैव दैट लेस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, मशीन्स एंड ऑल, सो दैट्स अ रीज़न वी नीड अ बिग विजन। और वो विजन रियलिटी बना एग्जैक्टली 4 साल बाद ऑन 23rd July 1927। एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ द डेट दैट चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग forever. A new chapter began. Nobody knew that they were witnessing the beginning of something that would continue for almost a century. उस दिन किसी ने imagine भी नहीं किया होगा कि एक दिन रेडियो इंडिया के हर गांव, हर शहर और हर घर का पहुंच जाएगा। On this historic day, the Indian Broadcasting Company Limited, popularly known as the IBC, officially launched its broadcasting service from Bombay, which we know now as Mumbai. And this is the main reason why we every year on 23rd July is remembered as Indian Broadcasting Day, because the Indian Broadcasting Company Limited, IBC, you know, has popularly announced it that I'm broadcasting from Bombay at Indian Broadcasting Day on 23rd July. And gradually broadcasting started becoming an important part of urban life. Unlike today, there were no celebrity interviews,

कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में

0: सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामचे जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं, बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉంటూ వచ్చింది. పరిచయం చేస్తున్న మై ఎల్ఐసి, ఎల్ఐసి సరికొత్త కస్టమర్ యాప్.
3: మీ పాలసీలు, పేమెంట్స్ పూర్తిగా టెన్షన్ ఫ్రీగా చూసుకునే ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్.
2: ఇన్స్టెంట్ ప్రీమియం పేమెంట్స్, 360 డిగ్రీ పాలసీ డీటెయిల్స్, క్విక్ యాక్సెస్ టు పాలసీ బెనిఫిట్స్, పాలసీ అప్డేట్స్, రివైవల్, పేపర్లెస్ ఈకేవైసీ.
4: ఎల్ఐసి ప్రతిక్షణం మీకు తోడుగా.
5: Nothing is more important than the welfare and future of youth of the country. In a social media post, Mr. Modi announced that the government will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. The Prime Minister said he has directed

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई,
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन.
0: जश्ने हैदराबाद.
2: वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 विद मी आरजे रामचरण. सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रकृति से फार्मेसी तक, हाउ दैट जर्नी हैज स्टार्टेड. सो आपने कभी कभी देखा होगा जब एक डॉग की तबीयत खराब होती है तो वो कुछ खास घास खाता है. ऑफ कोर्स कभी बिल्ली आपने आपको साफ करते रहते हैं, हाथी कुछ पेड़ों के छाल खाते हैं, बर्ड्स कुछ स्पेसिफिक लीव्स यूज़ करते हैं अपने नेस्ट में ताकि इंसेक्ट्स दूर रहें. नेचर इज़ एक्चुअली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैबोरेटरी. ऑफ कोर्स नाउडेज़ वी कैन इवन सी एट आवर होम्स, यू नो, वील हैव दैट नेस्ट ऑफ विच इज़ बीन, यू नो, फॉर्म्ड क्रिएटेड बाय बर्ड्स. एक्चुअली अभी अलग मन चूस्ता उठा, राइट? और शायद इसी इंटेलिजेंस, यू नो, दैट गेव ऑब्जर्वेशन से इंसान ने सीखा. This is of we created our things, we learned it from that, from nature actually. Shayad isi curiosity se ne insaan ko duniya ka sabse intelligent learner bana diya. That curiosity also made them to, you know, learn something new. Dosto, ek aur interesting fact batao. Did you know honey was used as a medicine nearly 5000 years ago? आज भी डॉक्टर्स कुछ सिचुएशंस में स्पेशली प्रोसेस मेडिकल हनी का यूज़ वुंड केयर के लिए करते हैं. दे यूज़ दैट हनी स्पेशली, यू नो, स्पेशली प्रोसेस मेडिकल हनी विल बी यूज फॉर, यू नो, क्लियरिंग दैट वुंड्स एंड दिस थिंग्स. साइंस ने भी माना है कि हनी में कुछ नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है. इसका मतलब क्या हुआ? Before knowing more about that, let's listen to an amazing track and we'll get back to you.

हेलो हेलो हेलो हेलो ओके दैट्स फाइन। सो इट्स द टाइम ऑन आवर स्टूडियोज इज़ 1:57 सेकेंड्स, सॉरी 57 मिनट्स। सो इट्स टाइम टू से एक्चुअली गुड बाय, बट गुड बाय ने वर्ड यूज चेयकूद काबट्टी लेट्स लिसन अ शॉर्ट सॉन्ग विच इम्प्रेसेस यू एक्चुअली।

0: Rainbow 101.9.
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई.
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: फ्रॉम 2 to 3 p.m. एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.

0: 101.9 స్టూడియో క్లాక్ సమయం 4:04 దాటి 22 సెకండ్లు అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: వింగ్ కమాండర్ పద్మనాభ గౌతంబర్ మహావీర్ చక్ర సె సమ్మానిత్ 1965 और 1971 के वॉर हीरो इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम. कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे. अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे. 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया. आज हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है.

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी रहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोल वेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। ये एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था।

यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी, और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम, पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की, और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशन्स दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था, पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध, 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ? विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ जानेंगे आगे।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती

कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रेनक मिशन्स में जाने

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे। तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसी उड़ाने भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसमिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर जेट सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटर्न टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंग्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनसॉम मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे। लेकिन मजाल है

0: फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51A(g) में मेंशनड है। ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजली छूट जाता है लोगों के नोटिस से, क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शन में उनके मैंशनड होता है। इफ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल गवर्नमेंट जनरली, कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है। तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड an important, it always had given importance to environmental preservation. So if we can see 1972 mein conference hua, uske baad 1974 mein Water Act aaya, 1980 mein Forest Conservation Act, 1981 mein Air Conservation, Air Prevention and Control of Pollution Act, and finally 1986 mein Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act, jisme sara environment ki sari cheeze cover hoti hai. But that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards जो होते हैं जो Water और Air Act के under काम करते हैं, and EIA notifications जो कि Environmental Protection Act के under से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner ki kitne tarike ke rights hain. Environment law kahan kahan se aa sakta hai. So ye constitutional rights aur fundamental rights, kyunki like I mentioned in the very beginning, usme mentioned nahi tha constitution mein shuruaat mein, to wo dheere dheere develop hua through amendments, but usme Supreme Court ka particularly kafi important role raha hai. So starting with one of the cases, so it is something which people say in environmental law circles, ki if we talk about the journey of environment law, wo kisi river se ya tree se nahi shuru ho raha hai, forest se nahi shuru ho raha hai, wo ek drain se shuru ho raha hai. Because this was the case of Municipal Council Ratlam versus Varthi Chand ka case, jisme there was an open sewage situation, sanitary issues the ek chote se town mein Madhya Pradesh ke, wahan pe citizens went to court and they asked the magistrate to intervene because a statutory manner mein CRPC jo pehle hua karta tha, which is now BNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए, बट वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजंस हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था।
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था।

0: दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम, स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी, कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. तो इवन ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुँचने लग गई. थर्ड वॉज सुओमोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ NGT ऑल्सो टेक सुओमोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओमोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया. चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए, साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज. अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज. अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो. तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ. आर्टिकल 21 में देर वेर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज़ अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट. वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज़ अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मैंशन नहीं किया. बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. And you must have heard the name of MC Mehta. He was a big time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी environment circles में he is one of the most important figures. तो once you get a right, what MC Mehta did is he filed petitions in court using Article 32, जिससे उनको actual remedy मिले. क्योंकि जब एक where there is a right, there is a remedy. So now the court has established a right under Article 21, so there is a remedy as well involved. So, for example, I have given the example of two cases, Ganga pollution case as and the oleum gas leak case. So, just to take one example, in the MC Mehta versus Union of India case, MC Mehta went to court and it said that ये tanneries से जो पानी, जो chemical factories और tanneries से जो waste निकल के पानी में जा रहा है, which is polluting the Ganga River, eventually the court had to order to shut down these tanneries. So, this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, इसमें court ने पहली बार एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द TN गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सामाइन, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 और 20 सेकंड्स हो चुके हैं। अब पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नायरंग। सामाइन, प्रोग्राम नायरंग का आगाज हो, आइए उससे पहले सुनते हैं एक अच्छी बात। दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को समझना ज़रूरी है। आज के इस डिजिटल दौर में रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। रिश्ते ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। आज के इस डिजिटल दौर में हम हजारों लोगों से जुड़ सकते हैं, मगर असल सुकून उस रिश्ते में है जहां मोहब्बत, एतमाद और खुर्बत का एहसास होता है। ये दौर हमें ये सिखाता है कि रिश्तों को सिर्फ पैगामात और लाइक्स तक महदूद न करें, बल्कि वक्त निकाल कर एक दूसरे को सुनें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का साथ दें। जब इंसान मुश्किल में होता है तो डिजिटल पैगाम काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक सच्चा रिश्ता ही दिल को सहारा देता है। इसलिए आज के इस डिजिटल दौर में ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को सहूलत के लिए इस्तेमाल करें।

मगर रिश्तों को दिल से, दिल की गहराइयों से निभाएं। सामाइन, रिश्तों को दिल की गहराइयों से निभाएं, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आइए नए रंग की शुरुआत करते हैं।

101.9. प्रोग्राम नैरंग में सामायन आप अब समाप्त करेंगे आज के दिन की अहमियत के बारे में। आज 23 जुलाई है और हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं ये क्यों मनाया जाता है? आइए इस बारे में जानते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कौमी नशरियात का दिन मनाने के लिए हर साल 23 जुलाई को इसलिए इंतखाब 23 जुलाई का इसलिए इंतखाब किया गया है क्योंकि इसी दिन 1927 को हिंदुस्तान की फजाओं में पहली बार रेडियो की आवाज़ गूंजी थी।

जी हाँ सामाइन, 23 जुलाई 1927 ईस्वी को हिंदुस्तान की फजाओं में पहली बार रेडियो की आवाज़ गूंजी थी। ये नशरियात एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC के तहत बम्बई स्टेशन से शुरू की गई थी। IBC के तहत बम्बई में ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई थी। इस एक कदम ने हिंदुस्तान में राब्ते और अबलाग के एक नए दौर का आगाज किया। बाद अजां 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम दिया गया। उसके बाद 1956 में इसे आकाशवाणी का खूबसूरत नाम मिला। आकाशवाणी जिसका मतलब है आसमान से आने वाली आवाज। हमें नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की अहमियत को समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग महज गीत और कहानियां सुनाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मुआशरे को जोड़ने, तालीम फैलाने और अवाम में बेदारी पैदा करने का एक ताकतवर हथियार है। ज़रा उस दौर का तसव्वुर करें जब टेलीविज़न और इंटरनेट का वजूद नहीं था। उस वक्त दूर दराज के देहातों और पहाड़ों पर बसने वाले लोगों के लिए दुनिया से जुड़ने का वाहिद ज़रिया रेडियो ही हुआ करता था। किसानों के लिए मौसम और ज़िरात की मालूमात हों या सरहदों पर खड़े जवानों के लिए अपने वतन की खबरें, रेडियो ने हमेशा एक सच्चे दोस्त का किरदार अदा किया है। हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आजादी में भी ब्रॉडकास्टिंग का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आजादी के मतवालों ने खुफिया रेडियो स्टेशंस के जरिए अपने पैगामात अवाम तक पहुंचाए और मुल्क के कोने कोने में आजादी की चिंगारी को रोशन किया। आज हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं। हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं और हम सोशल मीडिया, यूट्यूब और पॉडकास्ट की दुनिया में घिरे हुए हैं। लेकिन इस जदीद दौर में भी रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग की अहमियत कम नहीं हुई है। कुदरती आफात, तूफान या जलजले के वक्त जब तमाम जदीद मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम हो जाते हैं, तो उस वक्त भी रेडियो की लहरें ही हम तक मालूमात और इमदाद

नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हमें उन तमाम ब्रॉडकास्टर्स, सहाफ़ियों, तकनीकी माहिरीन और न्यूज़ रीडर्स की खिदमात का एतराफ़ करने का मौका फराहम करता है जो दिन रात की परवाह किए बगैर हम तक सच्ची खबरें और मालूमाती प्रोग्राम्स पहुंचाते हैं। आइए आज के दिन हम ये अज़्म करें कि हम नशरियात के इस ताकतवर और अजीम जरिए का इस्तेमाल हमेशा मुस्बित मकासिद, इल्म के फरोग और मुआशरे में अमन व मोहब्बत फैलाने के लिए करेंगे।

नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हमें याद दिलाता है कि रेडियो और टेलीविज़न सिर्फ ज़राए अबलाग नहीं बल्कि कौम की इज्तिमाई आवाज़ हैं। ये दिन हमें उस अहद की तस्दीद का मौका देता है कि हम मालूमात, तालीम, सकाफत और इत्तेहाद के इस सफ़र को आगे बढ़ाएं।

0: क्या बात है, क्या बात।
1: बेटा हमारा एक दिन
0: आशिक महान होगा,
1: आशिक महान होगा।
0: महान का जवाब नहीं है।
1: शुक्रिया हजरत। हजरत एक गजल के एक दो तीन शेर देखिएगा कि गरीब बाप हूँ बेटी मेरी कुंवारी है।
0: क्या बात है।
1: गरीब बाप हूँ बेटी मेरी कुंवारी है, कहाँ का चैन है दिन रात बेखरारी है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: कहाँ का चैन है दिन रात बेखरारी है, पुलिस ने कर दिया चालान मेरी गाड़ी को। पुलिस ने कर दिया चालान मेरी गाड़ी को, कहा कि आपकी बीवी डबल सवारी है।
0: अरे क्या बात है, वाह।
1: कहा कि आपकी बीवी डबल सवारी है, मुझे कमांडू कहते हैं लोग बीवी का।
0: जी
1: मुझे कमांडू कहते हैं लोग बीवी का, जो मेरे जिस्म पे ससुराल का सफारी है।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है।
1: जो मेरे जिस्म पे ससुराल का सफारी है। ये शेर बतौर खास समाज कीजिएगा कि मैं बन ही जाऊंगा एक रोज शायर आजम।
0: हाँ वो तो अभी हैं आप।
1: शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बन ही जाऊंगा एक रोज शायर आजम, अभी तो शेर चुराने की मश्क जारी है।
0: अरे क्या बात है, क्या बात।
1: अभी तो शेर चुराने की मश्क जारी है। गरीब बाप हूँ बेटी मेरी कुंवारी है,
2: बहुत अच्छा।
1: कहाँ का चैन है दिन रात बेखरारी है। बिल्कुल एक गजल तरन्नुम से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा।
3: वो तिरपट निगाहें घुमाते घुमाते,
2: अच्छा
3: वो तिर

0: अरे
1: इधर आ रहे हैं
0: उधर जाते जाते बहुत
1: इधर आ रहे हैं उधर जाते जाते इधर आ रहे हैं।
2: शेर देखिएगा,
1: कमर झुक गई है जवानी में मेरी,
0: कमर झुक गई है,
1: कमर झुक गई है
3: जवानी
1: में मेरी, तेरे नाज नखरे
3: उठाते
1: उठाते तेरे नाज नखरे,
0: बहुत काबिल रहे,
1: तेरे नाज नखरे उठाते उठाते तेरे नाज नखरे।
2: ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा।
0: इरशाद इरशाद
1: जल

0: पकाते जला कर खुसर सांस ये बोलते हैं, जला कर खुसर सांस ये बोलते हैं, बहु जल गई है
1: पकाते
0: बहु जल गई है
2: पकाते पकाते।

0: खुजाते सहर हो गई है। जलाया है धोनी ने रावण की लंका। वो मुंबई में छक्का लगाते वो मुंबई में छक्का लगाते।
1: आखिरी शेर देखिएगा।

0: उधर
1: क्या कहने
2: एक और पैरोडी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाज कीजिएगा। एक साहब अपनी बीवी की तारीफ कुछ इस तरह से कर रहे हैं,
1: हाँ
2: समाज कीजिए।
3: इरशाद।

0: बंद समाज कीजिएगा।
1: जुल्फे नहीं है सर पे हैं कांटे उगे हुए
2: क्या बात है,
3: अरे क्या कहने,
1: आंखें हैं जैसे सदख के लीमू सड़े हुए
3: क्या कहने,
1: बदबू हो जिसमें प्याज की तुम

0: क्या कहने
1: दूँ। अभी आप समात फरमा रहे थे जनाब वहीद पाशा कादरी को, अब चलते हैं उस मोतबर शायर की समत जो तंजो मिजाह की महफिलों में अपने मखसूस मिजाह कलाम के बास काफ़ी पसंद किए जाते हैं। हिंदुस्तान भर में मुशायरे पढ़ चुके हैं। इनका तखल्लुस भी मिजाहिया है जिसको सुनते ही लबों पर तबस्सुम की लकीरें नुमायाँ हो जाती हैं। मेरी मुराद जनाब मोइन अमर बम्बू से है। मैं उनका इस खते से इस्तकबाल करता हूँ। खोखला होता है बम्बू दोस्तों,
0: क्या
1: खोखला
0: कहने भाई,
1: होता है बम्बू दोस्तों, झट खफा होता है लम्बू दोस्तों।
0: अरे क्या कहने भाई, वाह
1: खोखला
0: वाह।
1: होता है बम्बू दोस्तों, झट खफा होता है लम्बू दोस्तों, हाथ बिन पेंदे के लोटे दे अगर, हाथ बिन पेंदे के लोटे दे अगर, साथ जब देता है चंबू दोस्तों।
0: अरे क्या कहने भाई,
1: जनाब
0: वाह वाह।
1: मोइन अमर बम्बू।
2: अगदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है,
0: अच्छा
1: अगदेसानी
2: अगदे सानी मेरा कहने
0: कहने को
2: को सुहाना
0: सुहाना लग
2: लग
0: रहा
2: रहा
0: है,
2: है। था लिफाफा नया, मजमून
0: पुराना
2: पुराना लग
0: लग
2: रहा
0: रहा।
1: अरे
0: अरे
1: रे रे, क्या बात है भाई।
2: घूंघट उठाते ही मेरे दीदे निकल गए बम्बू। टाप 90 था, पैमाने से सब पी रहे तो मिट्टी के प्याले कहाँ जाना।
0: अरे
1: क्या
0: भाई,
1: बात
0: क्या
2: है,
0: कहने
1: क्या
0: भाई,
1: चितज भी
2: कहने
1: है।
2: पैमाने से सब पी रहे तो मिट्टी
1: मिट्टी
2: के
1: के
2: प्याले
1: प्याले कहाँ
2: कहाँ
1: जाना, बहुत
2: जाना।
1: अच्छे।
2: ट्यूब लाइटा सब रख लिए तो मोमबत्ती के उजाले कहाँ जाना।
1: अरे क्या बात
0: क्या
1: है,
0: कहने
1: क्या
0: भाई,
1: बात
0: क्या
1: है।
0: कहने भाई।
2: कुदरत से जोड़ा बनता है बम्बू मियाँ, सच है, लेकिन गोरे गोरे सब चुन लिए तो पीले काले कहाँ
0: कहाँ जाना।
1: जाना। क्या
0: वाह
1: बात है, अच्छा
0: वाह
1: तंज है,
0: वाह वाह
1: अच्छा तंज है
0: वाह,
1: मोइन भाई,
0: क्या
1: बहुत
0: कहने
1: अच्छा।
0: भाई, वाह वाह वाह वाह।
2: ये एक और,
1: इरशाद।
2: सीने में आहों को दबाना अच्छा नहीं।
0: अच्छा,
2: सीने में
1: आहों को
2: आहों को
1: दबाना
2: दबाना अच्छा
1: अच्छा
2: नहीं,
0: नहीं,
2: तन्हा बिस्तर पे सो जाना अच्छा नहीं।
1: अच्छा नहीं।
2: बम्बू तुम ससुराल से ला लो जोरू को, डोई रख ले को हाथ जलाना अच्छा नहीं।
1: अच्छा, इरशाद।
2: ये हेलमेट के तालों से पुलिस किस तरह परेशान कर रही है और आवाम भी पुलिस को किस तरह परेशान कर रही है। हो चेकिंग कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग,
1: हाँ,
2: हो चेकिंग कितनी
0: कितनी
2: भी
0: भी
2: मुश्किल
0: चाल चल
2: चाल
0: जाते
2: चल
0: हैं
2: जाते
0: लोग।
2: हैं लोग, रोड पर पुलिस की नजरों से फिसल जाते हैं लोग।
0: अच्छा,
2: लाजमी हेलमेट हुई है जब से बम्बू, क्या करें, चिकनी हंडी पे कलर करके निकल जाते
1: अरे
2: हैं
1: क्या
0: लोग।
1: बात है,
0: क्या
1: कलर कराने का जवाब
2: कहने,
1: नहीं भाई, बहुत अच्छा।
2: ये नाखलफ औलाद के ताल्लुक से

0: इरशाद इरशाद
1: जी
2: माँ बाप को जो झिड़कियां देते हैं
1: जी
2: उस ताल्लुक से, छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी।
0: अरे
2: माँ
0: क्या
2: माँ
0: कह
2: कह
0: रहे हैं,
2: रही
0: बहुत
2: है,
0: अच्छा, बहुत अच्छा कहा।
2: छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद,
0: क्या कहें,
2: जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब।
1: हाँ
2: बीवी की ताईद लेकर
0: झिड़कियां
2: झिड़कियां
0: देता
2: देता
0: है
2: है
0: अब।
2: अब, बद्दुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने के
1: अरे क्या
2: बाद।
1: बात
0: अरे
1: है,
0: क्या
1: बहुत
0: कहने
1: अच्छे,
0: बाबा,
1: बद्दुआ किस
0: क्या
1: मुंह से दूं
0: अक्कासियत,
1: तुझको
0: तुझको
1: दुआ
0: दुआ
1: देने
0: देने
1: के
0: के
1: बाद।
0: बाद।
1: फिर एक
0: वाह
1: बार
0: वाह
1: बताओ।
0: वाह, ममता की अक्कासी,
2: हाँ,
0: आहा,
2: छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी,
1: बहुत खूब,
2: जागती थी रात भर तुझको सुला देने के
1: क्या बात
2: बाद,
1: है,
2: बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बद्दुआ किस मुंह से दूं तुझको
1: उसको
2: दुआ
1: दुआ देने
2: देने
1: के
2: के
1: बाद।
2: बाद।
1: बहुत
2: क्या कहने
1: अच्छे,
2: भाई, वाह
1: बहुत
2: वाह वाह
1: अच्छे।
2: वाह। मियाँ ये हाल ही का वाकया है,
1: इरशाद
2: परसों मुझे एक लड़की मिली थी,
1: जी,
2: बोली आबिट्स तक छोड़ दो।
1: अच्छा
0: अच्छा,
2: लेको जा रहा था, साला देखा,
1: हाँ
2: लेकिन साला शक नहीं करता, मुझसे ही तुम काई को मांगे लिफ्ट पूछा, तो लड़की बोली बुड्ढों के हम साथ रहे तो देखने वाला शक नहीं
0: अच्छा,
2: करता।
0: क्या कहने भाई,
1: अच्छा,
2: तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रही,
0: तन्हाइयों
2: तन्हाइयों
0: में
2: में
0: अपना वक्त अच्छा
2: अपना
0: काट
2: वक्त
0: रही,
2: अच्छा
0: क्या
2: काट
0: काट
2: रही,
0: रही।
2: बीवी गई है मायके मियाँ खुशियां बांट रही, बीवी पकाई मुर्ख तो 100 एतराज थे, बीवी पकाई मुर्ख तो 100 एतराज थे, अब दाल पड़ोसन की मजे ले को चाट रही। शादी करके घर में बीवी इसलिए लाता नहीं, शादी करके घर में बीवी इसलिए लाता नहीं, सामने हो मौत तो फिर कौन घबराता
0: अरे
2: नहीं,
0: वाह वाह वाह वाह,
2: हो गई जब शादी तो पछताने से क्या फायदा, दूध वापिस भैंस के थन में कभी जाता नहीं।
1: हाँ
0: अरे वाह,
2: एक आखिरी छवा,
0: इरशाद,
2: दिल सीने में रख ले को भी दिल का लगाना नहीं आता,
0: हाँ
2: अच्छे खासे हट्टे कट्टे वजन उठाना नहीं
0: नहीं
2: आता,
0: आता।
2: औरतों से बस दिल लगी करते हैं, शादी के नाम से घबराते हैं, खाली मामू कन्ने बनते हैं पतंग उड़ाना नहीं
0: नहीं
2: आता।
1: आता, अरे क्या बात
0: आता।
1: है।
0: क्या कहने
1: ये
0: भाई,
1: थे
0: वाह वाह,
1: जनाबे मोइन अमर बम्बू, आपसे ख्वाहिश की जाती है कि एक और गजल से नवाजें।
2: बाजार जाको शान से हौला खरीद रहा है, बाजार जाको शान से
1: होला
2: हौला
1: खरीद
2: खरीद रहा है, नेफा ही नहीं है गुड़गी में नाड़ा खरीद रहा है।
0: रहा है।
1: क्या
0: क्या
2: बात
0: कहने
2: है,
0: भाई,
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह
1: है,
0: वाह,
1: नेफा ही नहीं है,
2: नेफा ही नहीं है गुड़गी में
0: नाड़ा
2: नाड़ा
0: खरीद
2: खरीद रहा
0: रहा।
1: है, रास्तेकारी नाचकर।
2: अधड़ उम्र की बेवड़ की बेवा के वास्ते, अधड़ उम्र की बोड़ की बेवा के वास्ते, बुड्ढा चूड़ी का जोड़ा और चुटला खरीद रहा है।
1: अच्छा है, अच्छा
2: अच्छा,
1: है,
2: मुश्किल से जो पहनती है, मुश्किल से
1: जो
2: जो
1: पहनती है,
2: पहनती है बस आधी महक सी, मुश्किल से जो पहनती है बस आधी महक सी, हौले तो उसके वास्ते बुरखा खरीद रहा है।
1: अच्छा है,
0: अच्छा,
1: अच्छा तंज है, तंज है।
0: वाह वाह वाह,
2: बीवी से बढ़को मामा का रखता है वो ख्याल, बीवी से बढ़को मामा का
1: मामा
2: रखता
1: रखता
2: है
1: है वो
2: वो ख्याल,
1: ख्याल।
2: बिरयानी छोड़ को चाकने का डब्बा खरीद रहा है,
1: अच्छा अच्छा है,
2: तलाक दे के बीवी को बेवा से कर रहा है अख्त, तलाक दे के बीवी को बेवा से कर रहा है अख्त, क्यों ढोल अपना छोड़ को धपड़ा खरीद रहा है।
0: अच्छा,
2: बंबू नए फकीर को है भीख की जल्दी, बंबू
0: नए
2: नए
0: फकीर
2: फकीर
0: को
2: को
0: है
2: है
0: भीख
2: भीख
0: की
2: की जल्दी,
0: जल्दी,
2: बच्चा अभी हुआ नहीं झूला खरीद रहा
1: झूला
2: है।
1: खरीद
2: अरे
1: रहे,
2: इतना
1: झूला खरीद रहे, बहुत खूब।
0: एडवांस है।
1: ये थे जनाबे मुइन अमर बम्बू, जो अपने तंजो मिजाज से भरपूर कलाम से महफिल को जाफर नज़ार कर रहे थे। अब मैं उस मुब्तदी और कम मारूफ शायर को ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ, जिसको दुनिया तंजो मिजाज फरीस सहर के नाम से जानती है। जी हाँ, नाचीज़ यानी फरीस सहर से उसका कलाम समात फरमाए। सबसे पहले चंद खतात बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए कि बॉलिंग तेज करो, बॉलिंग तेज करो, या
0: क्या
1: करो
0: करो
1: तुम
0: तुम
1: स्पिन
0: स्पिन
1: ही,
0: ही।
1: वो रन मैं लेके रहूंगा जो लेने वाला हूं।
0: अरे
1: अरे
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह,
0: क्या कहने
1: बॉलिंग
0: भाई,
1: तेज करो, या
0: क्या
1: करो
0: करो
1: तुम
0: तुम
1: स्पिन
0: स्पिन
1: ही,
0: ही,
1: वो रन मैं लेके रहूंगा
0: रहूंगा
1: जो
0: जो
1: लेने
0: लेने
1: वाला
0: वाला हूं।
1: हूं।
0: वाह वाह,
1: पसंद आए तुम्हें या ना आए शेर मेरे, पसंद आए तुम्हें
0: या
1: या ना
0: ना
1: आए
0: आए
1: शेर
0: शेर
1: मेरे,
0: मेरे
1: मगर मैं पढ़ के रहूंगा जो
0: जो
1: पढ़ने
0: पढ़ने
1: वाला
0: वाला हूं। अरे क्या
1: हूं।
0: कहने
1: और
0: भाई,
1: अगर
0: वाह
1: मैं पढ़ के
0: वाह,
1: रहूंगा जो
0: आपके
1: पढ़ने
0: हौसले
1: वाला
0: की
1: हूं।
0: दाद देना भाई,
1: वाह
0: वाह वाह
1: वाह।
0: वाह,
1: और एक खता देखिए कि एक गजल कहने को हम इस बज्म में,
0: एक गजल कहने को हम इस बज
1: एक
0: में,
1: गजल कहने
0: कहने
1: को
0: को
1: हम
0: हम
1: इस
0: इस
1: बज्म
0: बज में।
1: में, ठोक कर आए हैं हम इस बज्म में,
0: आ, आ,
2: वाह
0: आ, अरे क्या
2: पहलवान,
0: कहने,
1: एक
0: वाह वाह, क्या
1: गजल कहने को हम इस बज्म में,
0: ठोकर,
1: ठोक कर आए हैं हम इस बज्म में, और दाद देने में बखालत मत करें,
0: क्या अरे वाह वाह वाह वाह
1: दाद देने
0: वाह
1: में बखालत
0: वाह
1: मत
0: वाह वाह
1: करें,
0: वाह वाह वाह,
1: वरना हम मारेंगे बम इस बज्म में,
0: अरे
1: वाह,
0: वाह,
1: वरना हम मारेंगे बम
0: क्या
1: इस बज्म
0: कहने
1: में।
0: भाई, वाह वाह वाह
1: और
0: वाह,
1: एक
0: इरशाद
1: खता, उर्दू की नजर कर रहा हूं, सब उर्दू का
0: आलम,
1: मुशायरा है। देखिए कि जब तक सूरज

0: चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा उर्दू तेरा राज चलेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा
1: उर्दू
0: उर्दू
1: तेरा
0: तेरा
1: राज
0: राज
1: चलेगा।
0: चलेगा। और तेरा मुस्तकबिल है दरख्शां, तेरा मुस्तकबिल है दरख्शां, हर कोई तुझसे
1: वाह
0: प्यार।
1: वाह वाह
0: दोनों बातें
1: वाह
0: राजकीय
1: वाह।
0: हो। और हजरत एक खता दो खता था, एक मशवरा सास को है, एक मशवरा बहू को। ये थे जनाबे मोइन अमर बम्बू, जो अपने तंजो मिजाज से भरपूर कलाम से महफिल को जाफराने जार कर रहे थे। अब मैं उस मुब्तदी और कम मारूफ शायर को जहमत कलाम देने जा रहा हूँ,
1: ये इनके
0: जिसको
1: सारी
0: दुनियाए
1: है।
0: तंजो मिजाज
1: अरे
0: फरीद शहर के नाम से जानती है।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: इनके सारी है।
1: वाह।
0: जी हाँ, नाचिस यानी फरीद शहर से उसका कलाम समाप्त फरमाए।
1: इरशाद।
0: सबसे पहले चंद खतात बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए कि बॉलिंग तेज करो या करो तुम स्पिन ही,
1: अच्छा,
0: बॉलिंग तेज करो या
1: या
0: करो तुम
1: करो तुम
0: स्पिन ही,
1: स्पिन
0: वो
1: ही।
0: रन मैं लेके रहूंगा जो लेने वाला हूं।
1: क्या कहने क्या कहने। वाह वाह वाह।
0: बॉलिंग तेज करो
1: या
0: या
1: करो
0: करो
1: तुम
0: तुम
1: स्पिन
0: स्पिन
1: ही,
0: ही, वो रन मैं लेके रहूंगा
1: रहूंगा
0: जो
1: जो
0: लेने
1: लेने
0: वाला
1: वाला
0: हूं। और
1: हूं।
0: पसंद आए तुम्हें या ना आए शेर मेरे,
1: क्या बात
0: पसंद आए
1: है।
0: तुम्हें
1: या ना
0: या
1: आए
0: ना आए
1: शेर
0: शेर
1: मेरे।
0: मेरे, मगर मैं पढ़ के रहूंगा जो पढ़ने वाला
1: अरे वाह
0: हूं,
1: वाह वाह वाह। बढ़िया
0: मगर
1: साहब,
0: मैं पढ़
1: वाह
0: के रहूंगा जो
1: क्या
0: पढ़ने वाला
1: हौसला
0: हूं
1: है
0: सर।
1: साहब। वाह वाह वाह
0: और एक
1: वाह।
0: खता देखिए कि इसमें तआरुफ है। कभी सताता नहीं मैं तो अपनी बीवी को,
1: अच्छा, क्या खुफिया
0: कभी
1: बात है।
0: सताता नहीं मैं तो अपनी बीवी
1: बीवी
0: को,
1: को,
0: है इतना खौफ मेरे दिल में उसके डैडी का।
1: अरे
0: कभी सताता
1: अच्छा,
0: नहीं
1: डैडी
0: मैं
1: का।
0: तो अपनी
1: हाँ,
0: बीवी को,
1: पुलिस में है
0: है
1: शायद।
0: इतना खौफ मेरे दिल में उसके
1: क्या
0: डैडी का।
1: कहने
0: मुझे तो ठीक से आती नहीं भी तुकबंदी,
1: क्या कहने।
0: मुझे तो ठीक से आती नहीं भी तुकबंदी, मैं फिर भी देखिए शायर हूं कितनी चोटी
1: अरे
0: का।
1: क्या
0: अरे
1: कहने भाई।
0: भाई,
1: वाह
0: मैं
1: वाह
0: फिर
1: वाह
0: भी
1: वाह वाह
0: देखिए
1: वाह वाह
0: शायर हूं
1: वाह
0: कितनी
1: वाह
0: चोटी का।
1: वाह।
0: और एक खता देखिए कि ऐसे भी लोग मिलते हैं देखो मिलेनियम में,
1: अच्छा,
0: ऐसे भी
1: मिलेनियम
0: लोग
1: में
0: मिलते हैं देखो
1: देखो,
0: मिलेनियम
1: मिलेनियम
0: में,
1: में।
0: और कागज के शेर होते हैं जैसे के म्यूजियम में।
1: अरे
0: अरे
1: वाह वाह
0: वाह,
1: वाह वाह
0: ऐसे
1: वाह
0: भी
1: वाह।
0: लोग
1: क्या
0: मिलते हैं देखो
1: तस्बीह है साहब।
0: मिलेनियम
1: वाह वाह
0: में,
1: वाह वाह।
0: कागज के शेर होते हैं जैसे के म्यूजियम में। उर्दू का मैं हूँ शायर, उर्दू का लेक्चरर भी,
1: अच्छा है,
0: अच्छा
1: अच्छा है। वाह
0: उर्दू का
1: वाह।
0: मैं हूँ शायर, उर्दू का
1: उर्दू।
0: लेक्चरर भी, बच्चे मेरे तो पढ़ते हैं अंग्रेजी मीडियम में।
1: अरे
0: अरे
1: क्या
0: वाह,
1: कहने। अरे
0: बच्चे
1: वाह
0: मेरे
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: पढ़ते
1: वाह।
0: हैं
1: क्या तंज
0: अंग्रेजी
1: है। वाह
0: मीडियम,
1: वाह वाह वाह।
0: उर्दू का
1: तंज।
0: मैं हूँ शायर,
1: अरे
0: क्या
1: वाह
0: कहने
1: वाह
0: सर, उर्दू का
1: बहुत
0: लेक्चरर
1: खूब,
0: भी,
1: बहुत खूब।
0: बच्चे
1: अरे वाह
0: मेरे
1: वाह।
0: तो पढ़ते हैं
1: तंज
0: अंग्रेजी
1: भी खुद
0: मीडियम
1: पर।
0: में,
1: वाह वाह वाह।
0: बच्चे मेरे तो पढ़ते हैं
1: क्या
0: अंग्रेजी
1: कहने
0: मीडियम में।
1: सर।
0: और एक खता उर्दू की नजर कर रहा हूँ,
1: इरशाद आली।
0: समाध फरमाए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद
1: चांद
0: रहेगा
1: रहेगा।
0: उर्दू तेरा राज चलेगा,
1: अच्छा है।
0: जब तक
1: जब तक
0: सूरज
1: चांद
0: चांद
1: रहेगा
0: रहेगा
1: उर्दू
0: उर्दू
1: तेरा
0: तेरा
1: राज
0: राज चलेगा,
1: चलेगा।
0: और तेरा मुस्तकबिल है दरख्शां,
1: हाँ, तेरा
0: तेरा
1: मुस्तकबिल है
0: मुस्तकबिल है
1: दरख्शां।
0: दरख्शां,
1: दरख्शां।
0: हर कोई तुझसे प्यार करेगा,
1: बहुत
0: कोई
1: अच्छा कहा।
0: हर कोई
1: वाह वाह
0: तुझसे
1: वाह
0: प्यार
1: वाह। अरे
0: करेगा,
1: क्या कहने
0: हर
1: सर।
0: कोई तुझसे प्यार। एक दो मशवरे हैं, एक मशवरा सास की खिदमत में है
1: हाँ
0: और दूसरा
1: जवाब।
0: बहू की खिदमत में।
1: इरशाद
0: समात
1: इरशाद।
0: फरमाए, पहले मशवरा सास को दे रहा हूं।
1: जी अच्छा।
0: आप बेटी ही समझें बहू को सदा,
1: अरे क्या कहने।
0: आप
1: वाह
0: बेटी
1: वाह।
0: ही समझें बहू को
1: बहू को
0: सदा,
1: सदा।
0: और ना दे लाल ले को गलत मशवरा।
1: अरे वाह वाह वाह।
0: आप बेटी ही समझे बहू को सदा,
1: सदा
0: और ना दे लाल ले को गलत मशवरा,
1: मशविरा।
0: तब बहू भी पुकारेगी माँ आपको,
1: अरे वाह।
0: तब
1: अरे क्या
0: बहू भी
1: कहने।
0: पुकारेगी माँ
1: माँ
0: आपको,
1: आपको।
0: फिर ना आएगा घर में कोई जलजला,
1: अच्छा है। वाह वाह।
0: फिर ना
1: अरे क्या
0: आएगा
1: कहने
0: घर
1: सर।
0: में
1: अरे
0: कोई
1: वाह वाह
0: जलजला।
1: वाह वाह। फिर
0: अच्छा
1: बताओ।
0: मशवरा आप
1: है सर।
0: बेटी ही समझे
1: मुकर्रर
0: बहू को
1: पड़ी।
0: सदा,
1: वाह वाह वाह।
0: और ना दे लाल ले को गलत मशवरा,
1: हाँ।
0: तब बहू भी पुकारेगी माँ आपको,
1: अरे क्या
0: फिर
1: कहने।
0: ना आएगा घर में कोई
1: बहुत
0: जलजला,
1: बहुत अच्छे
0: फिर ना
1: फरीद
0: आएगा
1: भाई।
0: घर में कोई जलजला।
1: वाह
0: और एक
1: वाह।
0: मशवरा बहू के लिए है, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मशवरा कोई नहीं हो सकता। समाज फरमाए, चाहे जितना भी सताए वो तुझे,
1: वाह।
0: चाहे जितना भी सताए वो
1: वो
0: तुझे,
1: तुझे
0: अज्म हिम्मत और समझ से काम ले।
1: क्या बात है।
0: चाहे जितना भी सताए वो तुझे,
1: अज़्म
0: अज्म
1: हिम्मत
0: हिम्मत
1: और
0: और समझ से काम ले। अगर जलाए सास तुझको ऐ बहू, घर जलाए सास
1: सास
0: तुझको ऐ
1: तुझको है
0: बहू,
1: बहू।
0: जलते जलते तू भी उसको थाम
1: अरे
0: ले,
1: क्या वाह वाह वाह वाह।
0: जलते
1: अरे
0: जलते
1: क्या
0: तू भी उसको
1: मशवरा है
0: थाम
1: भाई।
0: ले।
1: बिल्कुल भाई।
0: चाहे
1: इससे बेहतर मशवरा वाकई
0: जितना भी
1: नहीं हो
0: सताए
1: सकता।
0: वो
1: हाँ
0: तुझे,
1: हाँ अरे वाह।
0: अज्म हिम्मत और समझ से
1: अरे
0: काम
1: वाह
0: ले,
1: वाह वाह।
0: घर जलाए सास तुझको ऐ
1: अरे
0: बहू,
1: बहू जलते
0: जलते
1: जलते
0: जलते
1: जलते। अरे
0: तू
1: वाह
0: भी
1: वाह
0: उसको
1: वाह
0: थाम
1: वाह।
0: ले,
1: क्या
0: जलते
1: कहने।
0: जलते तू भी इसको
1: क्या
0: थाम
1: मशवरा
0: ले।
1: है भाई।
0: एक
1: वाह।
0: गजल के दो मतले, उसके बाद गजल पेश करता
1: इरशाद
0: हूं।
1: अली।
0: समात फरमाए कि चुपचाप मैं जो सुनता हूं ये उसका सिला है,
1: अच्छा,
0: चुपचाप मैं जो सुनता हूं ये
1: ये
0: उसका
1: उसका
0: सिला
1: सिला
0: है,
1: है।
0: कुछ लोग समझते हैं मुझे चिकना घड़ा है। चुपचाप मैं जो सुनता हूं
1: ये
0: ये उसका
1: उसका
0: सिला है,
1: सिला है।
0: कुछ लोग समझते हैं मुझे चिकना
1: चिकना
0: घड़ा है,
1: अरे वाह वाह।
0: कुछ लोग समझते हैं मुझे
1: अरे
0: चिकना
1: क्या
0: घड़ा है।
1: कहने।
0: एक मतलब और देखिए कि
1: इरशाद इरशाद।
0: आती नहीं खरीब
1: इरशाद।
0: मेरे कोई बला है,
1: वाह। अच्छा,
0: आती नहीं खरीब मेरे कोई
1: कोई
0: बला
1: बला
0: है,
1: है।
0: रहती जो मेरे साथ मेरी माँ की दुआ।
2: अरे क्या कहने, क्या कहने,
0: रहती जो मेरे साथ मेरी माँ की दुआ। आती नहीं खरीब मेरे कोई बला है, आती नहीं खरीब मेरे कोई बला है, रहती जो मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है, रहती जो मेरे साथ मेरी माँ की दुआ है। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। देखिए कि बात एक रास की, अब मैं हूँ बताने वाला, बात एक

0: क्लास की अब मैं हूँ बताने वाला शेर उस्ताद के डटकर हूँ सुनाने वाला। बात एक रास की अब मैं हूँ बताने वाला शेर उस्ताद के डटकर हूँ सुनाने वाला शेर उस्ताद के डटकर सुनाने वाला। और शेर देखिए कि जब तरन्नुम से मैं पढ़ता हूँ तो कहते हैं ये सब, जब तरन्नुम से मैं पढ़ता हूँ तो कहते हैं ये सब, लो फकीर आ गया शहरी को जगाने वाला, लो फकीर आ गया शहरी को जगाने वाला। जब तरन्नुम से मैं पढ़ता हूँ तो कहते हैं ये सब, लो फकीर आ गया शहरी को जगाने वाला। और ये शेर बतौर खास के बड़ी इज्जत से बुलाती है पड़ोसन मुझको, बड़ी इज्जत से बुलाती है पड़ोसन मुझको, उसके घर में नहीं नौकर जो पकाने वाला,
1: अरे वाह वाह,
0: उसके घर में नहीं नौकर जो पकाने वाला,
1: अरे वाह वाह वाह,
0: बड़ी इज्जत से बुलाती है पड़ोसन,
2: इज्जत लाजमी है,
0: उसके घर में नहीं नौकर जो पकाने वाला। और ये शेर भी देखिए कि ईद मिलने को वो मायके को गई है जब से, ईद मिलने को वो मायके को गई है जब से, घर में अब कोई नहीं मुझको डराने वाला,
1: अच्छा है
0: घर में अब कोई नहीं मुझको डराने वाला। और ये शेर भी देखिए कि बन गया साले का सारा जो मिनिस्टर यारो, बन गया साले का साला जो मिनिस्टर यारो, खुद को मैं कहता हूँ अब ऊंचे घर आने वाला,
2: अच्छा
1: अरे वाह वाह,
0: खुद को मैं कहता हूँ ऊंचे घर आने वाला। और ये शेर देखिए कि हालात हाजरा पर किस तुरुमखा में हैदम आके जो मारे मुझको, किस तुरुमखा में हैदम आके जो मारे मुझको, अरे मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, मारने वाले से बढ़कर है,
1: अरे
0: किस तुरुमखा में हैदम आके जो मारे मुझको,
1: बहुत खूब,
0: किस तुरुमखा में हैदम आके जो मारे मुझको, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला। और इसी खबील का एक शेर देख लीजिए कि हम तो मसरूफ हैं आपस में ही लड़ने से मैं यहाँ,
1: अच्छा
0: हम तो मसरूफ हैं आपस में ही लड़ने में यहाँ, काश आ जाए कोई हमको मिलाने वाला, काश आ जाए कोई हमको मिलाने वाला,
1: अरे वाह,
0: हम तो मसरूफ हैं आपस में ही लड़ने में यहाँ, काश आ जाए कोई हमको मिलाने वाला। और आखिरी शेर देखिए कि करके एहसान ढंडोरा नहीं पीटा करते, करके एहसान ढंडोरा नहीं पीटा करते, है बहुत नीच वो एहसान जताने वाला,
1: अच्छा
2: अरे क्या कहने,
0: है बहुत नीच वो एहसान जताने वाला, करके एहसान ढंडोरा नहीं पीटा करते, है बहुत नीच वो एहसान जताने वाला। और मख्ता भी बर्दाश्त कर लीजिए कि दाद जी भर के मुझे दीजिए महफिल में सहर, दाद जी भर के मुझे दीजिए महफिल में सहर, वरना महफिल से मैं उठकर नहीं जाने वाला, वरना महफिल से मैं उठकर नहीं जाने वाला, दाद जी भर के मुझे दीजिए महफिल में सहर, वरना महफिल से मैं उठकर नहीं जाने वाला। बात एक रास की अब मैं हूँ बताने वाला, शेर उस्ताद के डटकर हूँ सुनाने वाला,
1: मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला,
0: किस तुरुमखा में हैदम आके जो मारे मुझको,
1: क्या कहने फरीद भाई,
0: किस तुरुमखा में हैदम आके जो मारे मुझको, अरे मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और गजल के चंद शेर समाप्त फरमाए, ऐसा बना हूँ फूल तुझे देखने के बाद, ऐसा बना हूँ फूल तुझे देखने के बाद, सब कुछ गया मैं भूल,
2: अच्छा
0: तुझे देखने के बाद, ऐसा बना हूँ फूल तुझे देखने के बाद, सब कुछ गया मैं भूल तुझे देखने के बाद। और शेर देखिए कि रहती नहीं है बात कोई याद अब मुझे,
2: अच्छा
0: रहती नहीं है बात कोई याद अब मुझे, सर में घुसी है धूल,
2: अच्छा
0: देखने के बाद,
1: अरे वाह वाह,
0: सर में घुसी है धूल, रहती नहीं है बात कोई याद अब मुझे,
1: अरे वाह,
0: सर में घुसी है धूल तुझे देखने के बाद। और शेर देखिए कि गुस्से में बॉस मुंह को फुलाए जो रहता हूँ, गुस्से में बॉस मुंह को फुलाए जो रहता हूँ, एकदम वो होगा कूल,
2: अच्छा
0: देखने के बाद,
1: अरे वाह,
0: एकदम वो होगा,
1: अरे वाह, अरे क्या,
2: अरे क्या,
0: गुस्से में बॉस मुंह को फुलाए जो रहता
2: है,
0: एकदम वो होगा कूल तुझे देखने के बाद। और शेर देखिए कि जैतून का जो पहले हुआ करता था शजर, जैतून का जो पहले हुआ करता था शजर, अब बन गया बबूल
1: तुझे देखने
0: के बाद, अब बन गया बबूल तुझे देखने के बाद,
2: इस्तेमाल कर रहे हैं,
0: जैतून का जो पहले हुआ करता था शजर, अब बन गया बबूल तुझे देखने के बाद। और शेर बतौर खास मिजाह पैदा करने की कोशिश की है, खामोश अब किसी से भी बैठा ना जाएगा,
2: अच्छा
0: खामोश अब किसी से भी बैठा न जाएगा, उड़ती है सबको चूल, अच्छा तुझे देखने के बाद,
1: अरे वाह वाह,
0: सबको चूल तुझे देखने के बाद, खामोश अब किसी से भी बैठा न जाएगा, खामोश अब किसी से भी बैठा न जाएगा, उड़ती है सबको चूल तुझे देखने के बाद। और शेर देखिए कि आता है याद क्या मुझे सुन ले ये तू जरा,
2: अच्छा
0: आता है याद क्या मुझे सुन ले ये तू जरा, गोभी का एक फूल,
2: अच्छा
0: देखने के बाद,
2: बहुत
0: गोभी का एक फूल तुझे देखने के बाद, आता है याद क्या मुझे सुन ले ये तू जरा, गोभी का एक फूल तुझे देखने का बाद। आखिर शेर है कि आवाज तेरी फोन पे सुन के मैं था निहाल,
2: अच्छा
0: आवाज तेरी फोन पे सुन के मैं था निहाल, पर हो गया मलूल।

0: करने के बाद
1: क्या कहने
0: पर हो गया मदून तुझे, आवाज तेरी फोन पे सुनकर मैं था निहाल, पर हो गया मलूल तुझे देखने के बाद। और बर्दाश्त कर लीजिए कि अब शायरी भी अपने शहर जाने किस लिए, अब शायरी भी अपने शहर जाने किस लिए, लगती है शय फजूल देखने के बाद, लगती है शय फजूल तुझे देखने के बाद, ऐसा बना हूँ फूल तुझे देखने के बाद, सब कुछ गया मैं भूल तुझे देखने के बाद। अभी आप नाचिस फरीद शहर को सुन रहे थे, अब आइए उस मिजाहिया महफिल शेर के आखिरी शायर को भी बर्दाश्त कर लें। ये भी जवां साल हैं, यानी हाफ सेंचुरी से सिर्फ 2 बरस कम, इन्हें भी शायरी विरासत में मिली। इनके वालिद मोहतरम हजरत नज़ीर अली अदिल मरहूम से कौन वाकिफ नहीं, इनके कलाम में भी तंज़ो मिजाह की खूबसूरत आमेजश पाई जाती है। मेरी मुराद जनाब शाहिद अदिली से है, मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि वह आएँ अपने मिजाहिया कलाम से नवाजें। जनाब शाहिद अदिली
2: हजरत, पहले खिताब मुलाजा फरमाइए। पहला खता यूं कहा कि हालात है हाजरा पर, ये चली है ये जब से हवा 2020,
0: चली है जब से,
2: चली है ये जब से हवा 2020, अदा 2020, हया 2020।
0: अरे क्या बात है, अच्छा है,
2: अदा 2020, हया 2020, और थी शर्मो हया पहले 100%।
0: क्या बात है, क्या कहने,
2: थी शर्मो हया पहले 100%, और तनासुब ये घटकर हुआ 2020।
0: अरे क्या बात है, अरे
2: तनासुब ये घटकर हुआ 2020। और चली है ये जब से हवा 2020, अदा 2020, हया 2020, और थी शर्मो हया पहले 100%,
0: क्या बात है,
2: और तनासुब ये घटकर हुआ 2020, तनासुब ये घटकर। अरे ये मिजाइया
3: नारंग प्रोग्राम में मिजाहिया मुशायरा अभी आपने समाप्त किया सामाइन। इस मुशायरे में हिस्सा लेने वाले शोरा इकराम थे जनाब फरीद सहर, जनाब मोइन अमर बाम्बू, वहीद पाशा खादरी और जनाब शाहिद आदिली। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नारंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
4: FM Rainbow 101.9।
3: नारंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम नारंग के उस हिस्से में अब हम दाखिल हो रहे हैं जहां पेश होता है प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। जी हां सामाइन, गीत सुरीले गाता जा जिसमें हम पेश करते हैं ऐसे सुरीले नगमे जिन्हें हमारा आप बार बार सुनना पसंद करते हैं। आज हम गीतों के जरिए ये जानेंगे कि मोहब्बत में महबूब और महबूबा एक दूसरे की तारीफ करते हैं और तारीफ करना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम बात करेंगे और गीतों के ज़रिए समझेंगे कि एक दूसरे की तारीफ मोहब्बत में करना कितना ज़रूरी है। मोहब्बत के रिश्ते में एक दूसरे की तारीफ सराहना और अहमियत का एहसास दिलाना महज खूबसूरत अल्फाज का तबादला नहीं, बल्कि ये इस रिश्ते को मजबूत और तरोताज़ा रखने की बुनियादी ज़रूरत बनते हैं। मोहब्बत में दो प्यार करने वाले एक दूसरे की तारीफ करते हैं और ये तारीफ़ें दरअसल दिल के रिश्ते को मजबूत करने का ज़रिया बनती हैं। तारीफ सिर्फ ज़ाहरी हुस्न की नहीं होती, बल्कि किरदार, अखलाक, सब्र, कुर्बानी और छोटी छोटी बातों की भी होती हैं। जब महबूब अपनी महबूबा को कहता है तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी का सुकून है, तो महबूबा के दिल में मोहब्बत और खुर्बत मज़ीद बढ़ जाती है। इस तरह महबूबा जब कहती है तुम्हारी मेहनत और खलूस मुझे फ़ख्र दिलाते हैं, तो महबूब को एहसास होता है कि उसकी कदर की जा रही है। इसी तरह की तारीफें

हम अक्सर गीतों के जरिए सुनते हैं। तो आइए गीतों के इस सिलसिले को सुनते हैं जिसमें मोहब्बत में दो प्यार करने वाले एक दूसरे की तारीफें किस तरह करते हैं, हम गीतों के जरिए जानेंगे।

तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये थे गीत के बोल और इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म थी कश्मीर की कली। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और नए रंग में पेश किया जा रहा है

नयरंग और नयरंग में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और हम बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत में तारीफ की अहमियत के बारे में गीतों के जरिए। यूं महबूबा की तारीफ करना मोहब्बत को मजीद गहरा करता है, मोहब्बत को मजबूत बनाने के लिए ये लाजमी है कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे की तारीफ करें। ये तारीफें महबूबा को ये यकीन दिलाती हैं कि उसका वजूद महबूब के लिए कीमती है और महबूब के दिल में उसकी जगह किसी और से नहीं बदली जा सकती। यही तारीफें मोहब्बत को दवाम बख्शती हैं और महबूब व महबूबा के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम करती हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मज़बूत होता जाता है। महबूब का कहना कि तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, बड़ी प्यारी लगती हो, ये बातें महबूबा के लिए बहुत अच्छी लगने लगती हैं और प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला और मज़बूत होता है इस तरह की बातों को सुनकर।

धर्मात्मा फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। इस गीत को गाया था मुकेश और कंचन ने। आप सुन रहे हैं नैरंग प्रोग्राम, जिसमें गीत सुरीले गाता जा का सफ़र जारी है और हम आपको बता रहे हैं प्यार मोहब्बत में प्यार करने वाले एक दूसरे की तारीफ़ें किस तरह से करते हैं गीतों के ज़रिए। मोहब्बत में महबूब कभी अपनी महबूबा को चांद भी कहता है। यूं महबूबा को चांद से मुआवजा करना मोहब्बत की सबसे लतीफ और दिलकश सूरत होती है, जो महबूब के दिल में न सिर्फ तारीफ बल्कि शुक्रगुजारी का जज्बा भी पैदा करती है। महबूबा का चेहरा ऐसा है जैसे चांदनी रात में चमकता हुआ चांद, जो अंधेरों को मिटाकर दिल को सुकून बख्शता है। उसकी आंखें चांद के गिर्द बिखरे सितारों की मानिंद हैं, जो महबूब के दिल में ख्वाबों की कहकशां जगा देती हैं। उसकी मुस्कुराहट वही नरमी रखती है जो चांदनी रात की ठंडी हवा में महसूस होती है। चांद की तरह महबूबा का हुस्न भी कभी मुकम्मल और कभी नीम रोशन दिखाई देता है, मगर हर हाल में दिल को अपनी तरफ खींचता है। महबूब जब अपनी महबूबा को देखता है तो उसे यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो और उसकी रोशनी सिर्फ उसी के लिए मखसूस हो। ऐसे ही कुछ जज्बात बयां करता है महबूब इस गीत में। लीजिए सुनिए।

गीत सुरीले गाता जा। गीत सुरीले गाता जा के तहत हम यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो ज़रूर अपनी महबूबा को या अपने महबूब को तारीफ़ें अता करें, क्योंकि तारीफ़ें ही मोहब्बत को और मज़बूत करती हैं। गीतों के ज़रिए हम सभी सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये लाजिम है कि आप अपने महबूब से, अपने महबूब से प्यार मोहब्बत से बात करें और कभी अपनी महबूब का दिल ना दुखाएं, कभी अपने महबूब से गलत बात ना करें। और यही सच्ची मोहब्बत की निशानी है और यही बातें मोहब्बत को और मज़बूत करती हैं। सबसे आला तारीफ मोहब्बत में यह है कि सबसे आला तारीफ उस खालिक की है जिसने महबूबा को हुस्न और जमाल अता किया। महबूब जब अपनी महबूबा की खूबसूरती को देखता है तो दिल से ये दुआ निकलती है कि ऐ बनाने वाले, तेरा कमाल है कि तूने इतनी हसीन तख्लीक़ की है। यूं तारीफ महबूबा के साथ साथ उस ज़ात की भी होती है जिसने हुस्न को वजूद बख्शा। यूं मोहब्बत में तारीफ़ें सिर्फ ज़ाहरी नहीं होती बल्कि रूहानी भी होती हैं। ये तारीफ़ें महबूब और महबूबा के दिलों को खरीब करती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि हुस्न सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि शुक्रगुजारी का सबब भी है।

0: दिलवाले फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। इस गीत को गाया था कुमार सानू ने। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नयरंग, और नयरंग में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: Rainbow 101.9।
0: गीत सुरीले गाता जा। इस प्रोग्राम में सुरीले गीतों का सिलसिला जारी है, और गीतों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत में दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की तारीफ करते हैं, और तारीफ करना क्यों जरूरी है हम यही समझ रहे हैं गीतों के जरिए, ताकि मोहब्बत के रिश्ते को और मजबूत किया जा सके ऐसी तारीफों के जरिए जिन्हें हम गीतों के जरिए समझ रहे हैं। दो दिल जब मोहब्बत में बंधते हैं तो वो एक दूसरे के लिए आईना बन जाते हैं। महबूबा का हुस्न उसकी अदाएं महबूब के दिल को सुकून देती हैं, और महबूब का खुलूस महबूबा के दिल को एतमाद बख्शता है। ये बाहमी तारीफें और खुरबतें मोहब्बत को जिंदा रखती हैं। अगर एक दूसरे की तारीफें ना हों तो मोहब्बत का चिराग बुझने लगता है, लेकिन जब दोनों दिल एक दूसरे को सराहने लगते हैं, एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं, तो वो चिराग हमेशा रोशन रहता है। यूं कहा जा सकता है कि मोहब्बत में दो प्यार करने वालों के लिए एक दूसरे की तारीफें और एक दूसरे की मौजूदगी उतनी ही ज़रूरी है जितनी सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है।

दिल है के मानता नहीं, इस फिल्म का नगमा आपने सुना और इस गीत को गाया था कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। समाइन गीत सुरीले गाता जा, इस सिलसिले के तहत हमने ये कोशिश की आपको बताने की कि मोहब्बत में दो प्यार करने वाले एक दूसरे की तारीफ करना क्यों ज़रूरी है। हमने गीतों के ज़रिए समझने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि गीतों के ज़रिए दिए गए इस मैसेज को आप लोग याद रखेंगे और अपनी ज़िंदगियों में कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की तारीफ़ करें और मोहब्बत के रिश्ते को और मज़बूत करें। नारंग प्रोग्राम में अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं पयाम-ए-शब।

जो चिराग सारे बुझा चुके उन्हें इंतजार कहाँ रहा, जो चिराग सारे बुझा चुके उन्हें इंतजार कहाँ रहा। ये सुकून का दौर शदीद है, कोई बेकरार कहाँ रहा। इंसान को अपनी जिंदगी में उम्मीद के चिराग कभी बुझने नहीं देने चाहिए। जब दिल से उम्मीद, शौक और मकसद खत्म हो जाए तो फिर किसी बेहतर कल का इंतज़ार भी बाकी नहीं रहता। हकीकी ज़िंदगी वही है जिसमें इंसान मुसलसिल बेहतरी की जस्तजू, नेकी की तलब और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए बेकरार रहे। जो लोग अपनी बेकरारी, जज्बे और उम्मीद को ज़िंदा रखते हैं

वही जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद का चिराग हमेशा रोशन रखें। मकसद के बगैर जिंदगी सुकून नहीं, जमूद बन जाती है। बेकरारी अगर नेक मकसद के लिए हो तो कामयाबी का पहला जीना है। मायूसी इंसान को अंदर से खामोश कर देती है, जबकि उम्मीद उसे जिंदा रखती है। जिंदा दिल वही है जिसके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन हो, क्योंकि जिसके ख्वाब बुझ जाएं उसकी राहों से इंतजार भी रुखसत हो जाता है।

पयाम शब अभी आपने समाप्त किया। तहरीर व पेशकश थी जनाब नदीम अख्तर जैदी की। सामईन, पयाम शब के साथ ही आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल शब 9:30 पर, यहीं पर यानी आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शब बखैर।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
3: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारत

ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। किटोरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं स्टूडियो में। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार निखिल।
1: और सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। Benchmark domestic indices declined for fourth straight session. Sensex falls over 350 points. Nifty settles at 23,870. Most Asian stock market indices close in positive zone. And global crude oil prices rise around 5%.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,870 अंक पर बंद हुआ। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 5% तक ऊपर चढ़े।

0: And before we take the top story, important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 364 अंक लुढ़क कर 76,391 पर आ गया. वहीं निफ्टी 127 अंक गिरकर 30,870 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 1% की गिरावट देखी गई. इससे पहले भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की बढ़ती

0: कीमतों के बीच बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। सत्र के दूसरे हिस्से में गिरावट का रुख और तेज हो गया, जिससे सूचकांक लगातार चौथे दिन नीचे आकर बंद हुए हैं।
1: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 364 points to close at 76,391. The Nifty lost 127 points to settle at 23,870. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index and the Small-Cap 100 index fell around 1%. Earlier, the markets opened on a negative note amid geopolitical uncertainties and rising crude oil prices. The bearish sentiment intensified further during the second half of the session, dragging the indices lower for the fourth consecutive day.
0: Sensex में शामिल 30 में से 19 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों को देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स में लगभग 2.3%, बजाज फाइनेंस में लगभग 2% और इंडिको में 1.6% की सुस्ती आई। इसके विपरीत महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.7%, टीसीएस में 1.5% और एटर्नल में 1.1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई।
1: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 24 आउट ऑफ 26 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन। अमंग द टॉप लैगर्ड्स रियलिटी ड्रॉप्ड 1.8%, services slipped over 1.6% and telecommunication fell over 1.3%. In contrast, auto advanced over 0.5% and insurance rose 0.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,585 companies declined, shares of 1,637 companies advanced and shares of 169 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट कारोबार करते हुए 96.57 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो इसे केवल अल्पकालिक करेक्शन हम मान सकते हैं या फिर बाजार किसी एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ रहा, खासतौर पर ऐसे समय में जब तमाम भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई है और तेल की कीमतों में जो उछाल है वो भी देखा जा रहा है?
2: नहीं निखिल जी, मुझे लगता है जो इस हफ्ते हम जो देख रहे हैं कि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है, आज चौथा दिन है जब हम जो गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं भारतीय बाजार, तो मुझे लगता है जो एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण जो इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो दोबारा से जो है काफी तेज हो गया है और उस किसी भी तरह की कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई किसी तरह की कोई पीस का जो या तो बातचीत हो रही हो, बैक चैनल बातचीत हो रही है, लेकिन वो कितनी सार्थक होगी या कितनी सार्थक है वो अभी भी बिल्कुल अनिश्चितता है। और जैसा आपने कहा कि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, मतलब वो लगातार बनी हुई है। बीच में हमने देखा युद्ध विराम हुआ लेकिन वो टिका नहीं उसके बाद, और साथ साथ जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, तो इस साथ जो इस बार फिर हम देख रहे हैं जैसे पहले हुआ था, कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा उबाल, $90 के आसपास उसके ऊपर भी कीमतें चली गई थी, अभी आज इस समय भी मुझे लगता है 90 के आसपास है, तो वो हमारे लिए तो कम से कम बहुत खराब खबर है। और क्योंकि हम तकरीबन 90% अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो हमारी तेल या गैस की जो जरूरतें हैं उनको हम आयात करते हैं, तो इस मुझे लगता है मोटे तौर पर बाजार में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं वो इसी की वजह से।
1: सिद्धार्थ, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स द नेगेटिव्स इन द मार्केट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव ड्रैग्ड डाउन द मार्केट्स फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन, बट बिटवीन ऑल दिस यू नो आई सी अ रे ऑफ होप। इफ यू लुक एट द ऑटो सेक्टर, द ऑटो स्टॉक्स, एक्चुअली टुडे इज द सेकंड डे दैट द ऑटो स्टॉक्स एंड ऑटो शेयर्स हैव रिजन, सो व्हाट आर द रीजंस दैट इवन अमंग्स दिस डूम एंड ग्लूम ऑटो सेक्टर इज डूइंग सो वेल?
2: Anubha, I would say auto obviously is still in the positive territory, and the most important reason, if you look at the auto sales, the numbers that we got, the last numbers, and if you look across across segments, whether it was four wheelers, two wheelers, three wheelers, or sales of EV, which is really picking up now, and plus also the commercial vehicles, plus also if you look at the rural side, the sales of tractors, so we have seen a very positive growth in auto sales across segments, and I think that is the reason which is keeping the auto stocks in green. Plus also if you look at the results, the Q1 results, we've got a couple of auto companies have posted very very good results, very, very healthy.

0: results. So I think that is primarily the reason. And on a large scale also, I would also say that India's growth story, India's the demand side, whether it is rural or urban, I think both sides it is intact. So I think it is primarily because of that. And larger market obviously is under pressure because of the rise in oil prices again.
1: So in a way you can say that investors actually, even when the other sectors are not doing so well, the investors actually believe, you know, they go also with the future performance. They are, you know, they also assess the future performance of certain sectors, which help, you know, those sectors to do well.
0: See, Anubhav, if you look in last year and a half, one of the features which has become, which is something which Indian also kind of reflects on the maturity of Indian markets, that all along, since if you look post Trump, Donald Trump's assumption in as a U.S. president, that the tariff that he unleashed across the globe, not only India, it's a lot of other nations have been victim of Trump's tariffs. So you've seen the domestic institutional investors, though we've seen the exit of foreign institutional investors in a big way in last year and a half, 2 years, we've seen them exiting. So, but the domestic institutional investors and also the retail investors, so they showed maturity and they showed their faith in the Indian economy and they continue to invest. And now, since you said that investors always look at the, you know, at a future and make their investments looking at the future prospects. So if you see the last 1 month from 15 June to 15 July, the positive side is that now the foreign institutional investors are also returning to the Indian markets. So, and they've almost bought to the tune of about $6 billion. So, and if you look at the net data in terms of their selling and buying, I think that also is around $3 billion. The data that we have till from 15 June to 15 July.
1: Yeah.
0: So I think as far as Indian economy goes, I think there is nothing negative for us, except yes, we had slight questions on our monsoon. The so I think, and but despite sluggish monsoons, the sowing has been good for the Kharif season. So I think, except that, I don't see any challenges in terms of for our domestic one. But yes, there are external factors which are having impact on our Indian economy.
2: Well, Siddharth, abhi large cap ki baat kar rahe the, thoda sa dhyan aapka small cap aur mid cap ki taraf le jao. To 1% ki giravat hume dekhne ko mili hai. To kya ye andaza lagaya ja sakta hai ki niveshak ab is taraf paisa lagane se bach rahe, jokhim uthane se bach rahe, ya dusre jo karan hai wo isme zyada apni importance dikha rahe, jaise ki Diwali ki jab hum baat karte hain.
0: Nahi Nikhil, mujhe aisa nahi lagta hai. Aise dinon pe jab bhi bazaar girti hai to ye jisko hum kehte hain, ye hamesha ek ye trend bhi hai. Aap dekhenge ki small कैप और मिड कैप्स में जो गिरावट वो कहीं ना कहीं हमेशा ज्यादा होती है लार्ज कैप्स के बनस्पत. दूसरी बात, पिछले एक डेढ़ साल की जो अनिश्चितता बनी हुई है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों ने जो है लार्ज कैप्स की तरफ, या जो उनको लगता है थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा शायद निवेशक उस तरफ ज्यादा गया है. हालांकि मैं उसको कहीं से भी इस तरह से नहीं मानता हूं कि बाजार में निवेशकों का जो है उनका भरोसा कम हुआ हो या टूटा हो. मुझे लगता है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट है. हाँ, ये इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे एक डायरेक्ट कह लें या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, चाहे महंगाई पे हो, चाहे हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी उसकी रफ्तार है, गति है, ग्रोथ, तो उस पर इम्पैक्ट होगा. तो शायद कहीं ना कहीं वही बाजार में हमको इस हफ्ते दिख रही
2: है. लेकिन एक दूसरी बात ये भी कि पिछले सप्ताह बाजार ने काफी मजबूती दिखाई, तो इस हफ्ते वो मजबूती हमें दिखाई नहीं दे रही. जबकि अगर एक हम रेंज लेकर के चलते हैं तो वैश्विक घटनाओं की रेंज लगभग उसी प्रकार से, लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है.
0: नहीं निखिल, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उसके पीछे आप ये देखेंगे कि शायद जो आपने देखा कि लास्ट वीक फिर भी मार्केट सस्टेन कर रहे थे स्थिति, तो शायद कहीं ना कहीं एक बाजार को भरोसा था कि शायद ये जो अमेरिका और ईरान के बीच जो दोबारा जो ये लड़ाई शुरू हो गई है, शायद कहीं ना कहीं वो ज्यादा दिन ना चले और दोबारा दोनों बातचीत जो है बातचीत शुरू हो और किसी तरह का कोई पीस टॉक्स हो और उस कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई ट्रूस हो जाए. और तो शायद क्योंकि इस समय आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से लगातार अमेरिका के जो हमले हैं 8-9 दिन हो गए हैं वो बने हुए हैं. और अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने बल्कि ये वार्निंग दी है कि अब वो जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो जो बिजली संयंत्र हो या चाहे उनके
1: ब्रिजेस
0: हो या

0: तो उन पे भी अटैक करेंगे अगर ईरान अब जो है अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जहाज हैं जो तेल लेके वहां से निकल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने जो ईरान सपोर्टेड हूती रिबल्स हैं उन्होंने जो रेड सी का रूट है जो कि अभी तक हमारे लिए सबके लिए एक जो ऑल्टरनेट सप्लाईज का एक रूट बना हुआ था उसको अब उन्होंने उस पे भी उन्होंने जो है रोक लगाई बल्कि दो जहाजों पे अटैक भी किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में इन इन जो नए ये इवेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है।
1: बट सिद्धार्थ यू वेरी राइटली सेड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स द इंडियन स्टोरी द ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट एंड यू नो इन फैक्ट दैट इज व्हाट इज बीइंग हैज बीन मेंशनड इन द आरबीआईज स्टेट ऑफ द इकॉनमी बुलेटिन दैट जुलाई बुलेटिन एंड एज यू वर सेइंग दैट यू नो द एफआईआईज आर मेकिंग अ कमबैक हैव मेड अ कमबैक इनटू द इंडियन इकॉनमी सो that overall if you know you look at it it's a very good news because as the RBI bulletin says that the healthy domestic demand and resilient industrial and services sectors have helped sustain economic momentum despite challenges arising from fragile geopolitics and supply chain pressures and as you were mentioning foreign portfolio investors infused $3.1 billion into equity and debt markets in July up to the 20th of this month while foreign direct investment remained higher during April and May this year so overall like we are discussing that it's the trust of not just FIIs the domestic investors as well as FIIs is still intact and you know in the Indian story
0: as Anubha as you rightly said it is not only the FIIs as you also mentioned that figure in FII in April May the FDI inflows have also it's almost at a record level of about a little over $6 billion yeah. and we are expecting a net FDI in the current financial year of upwards of around $15 billion which is I think after 4 years we are seeing that kind of number or FDI inflow into the country and especially at a time when things are so uncertain and yeah. as the RBI report also mentions about the heightened global economic yes. uncertainty also supply bottlenecks but despite all that if you look at they've mentioned in the report the demand as which whether it is in the urban areas or in the rural areas and if you look at the GST data the digital payments data so everything is positive the industrial India's industrial sector or the services sector continue to be to record a robust growth and the only concern is on the food side
1: the yes, kharif sowing
0: has been a little delayed because of the monsoon onset of monsoon was a little delayed but there also a big for us a big I would say a caveat for us is that we have huge stocks of food grains
1: right.
0: so there is nothing to worry especially the rice wheat the essential items plus government has also been kind of procuring the essential vegetables also to you know ward off any such eventuality so I do not see in terms of our own domestic parameters macroeconomic everything is positive and if you look at the worst of projections for our current financial year GDP yeah. India would definitely be the fastest growing economy
1: yes.
0: and all the projections are upwards of 6.5%
1: exactly.
0: so and if you look at even the first 3 months of export data so even there we are seeing a 16% growth so I do not see anything to worry in terms of our own domestic challenges yes inflation could be a concern in terms of obviously oil
1: yes.
0: high oil prices feeding in so but that also till now the last data we have seen 4.4% I think that also is within the band
1: yes
0: so
2: तो सिद्धार्थ इसी रिपोर्ट से जुड़ा एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में देश को सफलता भी मिल रही है तो क्या ये कि ये बड़ा कारण है कि बैलेंस बनाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं खासतौर पर अपनी इकोनॉमी को एक स्टेबल प्लेस देने के मामले में
0: नहीं देखिए निखिल जब आपने देखा होगा जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई तो कहीं ना कहीं हमारे चूंकि हम बड़े पैमाने पे ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं और हमारा ऑयल गैस का बिल बहुत बड़ा और इसका पेमेंट चूंकि हम डॉलर में करते हैं तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन $700 बिलियन तो वो ही एक बड़ा कारण था कि जिससे किसी तरह का जो हमारे रुपये पे प्रेशर जरूर आया करेंसी पे चूंकि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसके लिए सरकार ने उत्तर इमीडिएटली स्टेप्स लिए एक तो ये इंश्योर किया कि कहीं भी देश में जो पेट्रोल पदार्थ हैं चाहे वो ऑयल हो या पेट्रोल हो डीजल हो या गैस की जो सप्लाई है उन पे इम्पैक्ट ना हो तुरंत सरकार ने तत्काल कदम उठाए और उस पूरी स्थिति पे नियंत्रण

0: रखा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप दूसरा लिया जो फर्टिलाइजर को लेके था, ताकि हमारा जो खरीफ की जो सोइंग थी उस पर इम्पैक्ट नहीं हो। एक तो हमारे पास फर्टिलाइजर के बहुत अच्छे भंडार थे, साथ ही सरकार ने तुरंत जो भी इम्पोर्ट, बहुत हाई प्राइस पे हमने इम्पोर्ट किया लेकिन हमने किया। तो और जो आपका सवाल है कैसे जो जो निवेश आ रहा है, जो FDI FPI और उसके साथ साथ एक और अच्छी, हम लोगों ने अभी ने FDI की बात की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की, दोनों में हमें एक पॉजिटिव इन्फ्लो दिख रहा है। उसके साथ साथ एक कल एक और RBI ने आंकड़ा जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो डिपॉजिट की स्कीम सरकार ने अनाउंस की थी, चूंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर था उसको भी उसका भी तकरीबन अभी तक $20 बिलियन कल जो डेटा आया उसमें हमें आ चुका है
1: जी।

0: उसके साथ साथ एक और अच्छी हम लोगों ने अभी ने एफडीआई की बात की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की, दोनों में हमें एक पॉजिटिव इनफ्लो दिख रहा है। उसके साथ साथ एक कल एक और आरबीआई ने आंकड़ा जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो डिपॉजिट्स की स्कीम सरकार ने अनाउंस की थी, क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर था उसको भी उसका भी तकरीबन अभी तक $20 बिलियन कल जो डेटा आया उसमें हमें आ चुका है।
1: आगे बढ़ते हैं। इंफोसिस लिमिटेड ने आज इस वित्त वर्ष में अपनी पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी के राजस्व में वार्षिक आधार पर अपनी परिचालन गतिविधियों में 14% की बढ़त के साथ 48,211 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस कंपनी का कुल लाभ 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपए हो गया है।
2: Interglobe Aviation Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's standalone revenue from operations rose nearly 20% year-on-year to 24,584 crore rupees. The company reported a standalone net loss of 381.5 crore rupees as compared with net profit of 2,161 crore rupees in the corresponding quarter of the previous financial year.
1: भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि, बाजार के बढ़ते अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य राष्ट्र के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हुआ है, वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में भारत के विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल कार्यबल, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर अवसंरचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने के प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है। तो सिद्धार्थ, जैसा कि हम बात कर रहे थे निवेश को आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, यूरोप की बात करें तो सरकार का काफी फोकस है उधर।
0: ना केवल यूरोप, जैसे आप देखा होगा जब से पिछले एक साल में आप देखेंगे तो कई सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर डाले, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दें या दूसरे कंट्री से कैसे हमारे यहाँ जो है निवेश आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो हमने उसके लिए पीएलआई स्कीम्स जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए। तो आप देख भी रहे होंगे कि खासकर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, मोबाइल में आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लगातार जो कोशिश है कैसे हिंदुस्तान में किसी भी बिजनेस करने वाले को निवेश करने से लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे उसको हैंड होल्ड किया जाए, कैसे कि किसी भी तरह से उसको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, और उस यही वजह है कि आप देख रहे हैं जो आप जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि आज हम एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नॉट ओनली एज फॉर कैपिटल बट ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
1: जी, एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.4% चढ़ा, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% ऊपर आ गया, जापान के निक्केई में लगभग 0.5% की तेजी आई, चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.2% से ज्यादा का उछाल आया और ताइवान के ताइएक्स में मामूली बढ़त देखी गई। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% से अधिक नीचे आ गया।
2: Let's move on to the commodities. Global crude oil prices surged today. Brent crude was trading almost 4.9% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 4.4% up at $90.70 per barrel when reports last came in. Let's also have a look at the gold and silver prices in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading 1.2% down at 1,44,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.1% down at 2,22,790 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.2% गिरकर 1,43,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी करीब 2% नीचे आकर 2,22,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, कारोबारी सप्ताह की बात करें तो कल अंतिम दिन होगा और आज चौथा दिन था जब लगातार हमने गिरावट का रुख देखा है, पिछले सप्ताह के मुकाबले भी सुस्ती देखी गई। अब क्या लगता है कि आने वाले सप्ताह के लिए निवेशकों को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, खासतौर पर ऑयल्स के दाम पर या फिर जो दुनिया भर में तमाम अनिश्चित राजनीतिक की अनिश्चित घटनाएं हो रही हैं उन पर

0: या फिर और भी कोई भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं?
1: नहीं, मुझे लगता है निखिल सीधी सी बात है, जो अमेरिका और ईरान का के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या होता है, क्योंकि उसी का सीधा इम्पैक्ट है जो आपने बोला क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। तो मुझे लगता है जो एक बड़ा चीज जो निवेशकों को की नज़र होगी या मार्केट की चाल वही डिसाइड करेगा, वो होगा कि यूएस और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है और उसका क्या होता है आने वाले दिनों में।
2: Siddharth, I'll come back to the prices of the gold and silver prices, you know, especially gold prices. We see that they've fallen a little bit, you know.
1: And Anubha, I would also add one more thing here.
2: Sure.
1: To the Nikhil ke jo sawal tha, Q1 results hamare achhe aaye hain. अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसके बावजूद हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सबसे बड़ा निवेशकों के मन में या बाजार में जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है और वो उसका भविष्य में क्या होगा।
2: जी, short brief comment from you on the gold and silver prices, because are we seeing the falling in price because of the high US bond treasury yields and because of a firmer dollar?
1: Your question also has the answer. It's basically because we are seeing the earlier the conventional rule has been broken this time.
2: Yeah.
1: Each time there is uncertainty, gold prices used to go up. But this time, because it is the US dollar and the US treasury yields and the fear of inflation,
2: yeah.
1: So that is driving people away from gold.
0: सिद्धार्थ, जिस कार्यक्रम में शामिल होने और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप दोनों को भी धन्यवाद।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर फोर्थ स्ट्रेट सेशन। सेंसेक्स फॉल्स ओवर 350 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 23,870। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन पॉजिटिव जोन। And global crude oil prices rise around 5%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
0: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसिनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोस डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने या उसे साझा करने से

0: पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे सस्ती, पारदर्शी और चालक हितेशी सेवा बताया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
1: We are always ready for dialogue. The doors of the government are always open and you are welcome to engage in discussions at any time as per your convenience. We are prepared to discuss every issue including those related to the movement as well as any other matters of concern. The Union Health Minister and Senior Leader Shri J.P. Nadda will hold discussions with you and I will also be present during the meeting.
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: Earlier, Prime Minister Narendra Modi announced that the center will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in NEET paper leaks and asserting that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of youth of the country. His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both the houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the government is highly sensitive to the concerns of students, particularly over competitive examination paper leaks. Talking to media, Ms. Sitharaman said that the government had acted swiftly by arresting those involved in the NEET paper leak issue. She added that Prime Minister Narendra

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। आवाज है अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि दिल की कुछ बातें किसी दिन यूं ही नहीं कही जा सकती। वे समय की लंबी धूप में अपना अर्थ कमाती हैं और कई बार होठों तक आकर लौट भी जाती हैं, क्योंकि उनका ठिकाना किसी के सुनने वाले कान नहीं थे। मैंने उन्हें अपने दिनों के बीच इस तरह संभाला था जैसे कोई दुर्लभ पांडुलिपि वर्षों तक सुरक्षित रखी जाती है। तुमसे मिलूंगी तो शायद शुरुआत किसी साधारण मुस्कुराहट से होगी, लेकिन उसके पीछे अनगिनत अनकहे मौसम खड़े होंगे। तब समझ पाओगे कि चुप रहना हमेशा खाली रह जाना नहीं होता। कभी कभी वही जीवन का सबसे सच्चा संवाद होता है जो सही व्यक्ति के लिए

हम बचाकर संजोकर रखते हैं। और आज मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो केवल तुमसे मिलकर ही अपने पूरे अर्थ में जन्म लेना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा। और अगला गीत, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, आवाज है लता मंगेशकर की।

कुछ बातें लिखी जा सकती थी, फिर भी मैंने उसे किसी पत्र का हिस्सा नहीं बनाया। वे शब्द नहीं, विश्वास की आयु थे, जिन्हें कागज की नहीं तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत थी। हर बार लगा कि आज कह दूं, हर बार लगा कि आज कह दूं, फिर लगा अभी उनका समय पूरा नहीं हुआ। कुछ अनुभूतियां जल्दी बोल देने से छोटी पड़ जाती हैं।

कुछ अनुभूतियां जल्दी बोल देने से छोटी पड़ जाती हैं, इसलिए भीतर ही भीतर उन्हें पकने दिया। अब जब कभी सामने बैठेंगे तब शायद एक साधारण सा प्रश्न पूछूंगे, कैसे हो, और उसी प्रश्न की तह में छिपे होंगे वे सारे उत्तर जिन्हें बरसों से केवल तुम तक पहुंचना था। और अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म अभिमान से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आराधना, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है भाभी, आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रजनी ने आज क्षितिज से क्षितिज तक नील पट बिछा दिया था। उस पर बादलों ने रूप बदलते हुए अनगिन आख्यान रचे और सितारों ने बिना किसी शोर के उन आख्यानों में अर्थ भर दिए। एक बादल दूर समुद्र की यात्रा से लौटा था। उसकी देह में लहरों का नमक था, नदियों की स्मृतियां थीं, पहाड़ों की थकन थी, धान की बालियों की प्रतीक्षा थी। एक सितारा करोड़ों वर्षों से उसी दिशा में टंगा था, किंतु उसका प्रकाश हर रात नया प्रतीत होता था। वो जानता था स्थिर रहकर भी नवीन बना जा सकता है। रात ने दोनों को एक ही आकाश में स्थान दिया। तभी संसार ने समझा, परिवर्तन और स्थिरता प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक दूसरे की पूरक धाराएं हैं। धरती के वृक्ष ऊपर देख मुस्कुराए, मानो कह रहे हो जो ऊपर इतना विशाल होकर भी एक दूसरे को जगह दे सकते हैं, उन्हीं से संतुलन का पाठ सीखना चाहिए। जब प्रातः की आभा निकली, ना कोई विजेता था ना कोई पराजित, केवल आकाश था जो सबको समेट लेने के कारण और भी विराट हो गया था।

और ये वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और उन कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के अगले सप्ताह के सत्र में सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट प्रश्न पत्र लीक मामले, छात्र विरोध प्रदर्शनों और अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। अभी

जानकारी मिली है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में श्री वांगचुक से मुलाकात कर अनशन तोड़वाया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में पहला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

रात उतर आई थी धीरे धीरे, मानो आकाश ने अपने प्राचीन इतिहास का एक और पृष्ठ खोल दिया हो। चांद आज किसी विजेता की भांति नहीं,

एक विनम्र साधक की तरह नभ के मध्य विराजमान था। उसके उजले मुख पर युगों की यात्राओं का धैर्य था और अनगिन ऋतुओं की स्मृति। मैंने अपने मन से पूछा, तुझे इस चांद में ऐसा क्या दिखाई देता है? मन ने कहा, मुझे इसका प्रकाश नहीं, इसका संयम आकर्षित करता है। यह कभी सूर्य बनने का आग्रह नहीं करता, फिर भी असंख्य पथों का सहचर बन जाता है। रात मुस्कुराई, उसने चांद के चारों ओर नील विस्तार का ऐसा मंडल रचा जिसमें किसी को छोटा सिद्ध करने की कोई चेष्टा नहीं थी। वहां केवल संतुलन था और उसी संतुलन में सृष्टि का सौंदर्य निहित था। मन फिर भटकने लगा, कभी बीते वर्षों की ओर और कभी आने वाले दिनों की ओर। चांद उसे देखता रहा, जैसे कोई अनुभवी ऋषि अधीर शिष्य की गति समझ रहा हो। तभी एक शीतल किरण धरती तक उतरी। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल इतना बताया, जिसे स्वयं से मिलने का साहस मिल जाए, उसे संसार से शिकायत कम रह जाती है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन, आवाज है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। तुम्हारा नाम किसी पुकार की तरह नहीं आया, ना किसी दावे की तरह, बस जैसे सूखी धरती पर हरियाली का पहला संकेत उतरता है, वैसे ही मेरे भीतर एक नया अर्थ आकार लेने लगा। मैंने देखा गुलमोहर पहले भी खिलते थे, पगडंडियां पहले भी थीं, आकाश पर बादल भी पहले जैसे ही आते जाते थे, पर न जाने क्यों उन सब के चेहरे बदल गए। लगता था जैसे दुनिया ने कोई नया वस्त्र नहीं पहना, पर मेरी दृष्टि ने पुराने दृश्यों में नया संगीत खोज लिया हो। अब जब मैं किसी पुस्तक का पन्ना पलटती हूँ, अक्षरों के बीच एक महीन सी गर्माहट उतर आती है। जब किसी नदी का उल्लेख पढ़ती हूँ, तो उसके जल में तुम्हारी सहजता की झलक मिलती है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ, तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ, तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है। हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। और अब अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है अभिमान।

यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। आवाज है यसुदास की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 2:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि सरकार की छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपिक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामलों का जल्द निपटान करना है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले टी20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने

लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे। लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे, मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा। मैंने उसका नाम लिखना भी मुनासिब न समझा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम। तो आइए सुनते हैं ये गीत, फिर करते हैं आगे की बातें।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। मैंने तुम्हें कभी पुकारा नहीं ऊंचे स्वर में, ना किसी दहलीज पर तुम्हारा नाम लिखकर रखा। फिर भी जाने कैसे मेरे भीतर का एक प्रदेश तुम्हारे लिए आरक्षित रहा, जैसे किसी वन के मध्य एक पगडंडी रहती है जिसे हर यात्री नहीं जानता, पर वही पहुंचाती है सबसे निर्मल जल तक। तुम वहां बसे रहे, न पत्रों में, न परिचयों में, न उन कथनों में जिन्हें लोग प्रेम समझ लेते हैं। तुम बसे रहे उस जगह जहां एक स्त्री अपने सारे मुखौटे उतार कर स्वयं से मिलती है। मैंने जब जब दुनिया की भीड़ में लौट कर अपने अंतर का द्वार खोला, तुम वहां मिले, किसी प्रतीक्षा की मुद्रा में नहीं, बल्कि ऐसे मानो कभी गए ही न थे। एक कैसा संबंध है जिसमें दूरी मीलों से नहीं नापी जाती और न निकटता स्पर्श की शर्त पर नहीं टिकी रहती, जहां कोई दावा, कोई अधिकार नहीं, फिर भी एक अदृश्य धागा हर बिखराव को जोड़ता है। मैंने देखा है बहुत से लोग बड़े सुंदर वाक्य रच लेते हैं, पर उनके साथ चलते हुए बार बार मन को अपना परिचय देना पड़ता है, और कुछ लोग जिनके पास पहुंचकर अंतर का सारा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। तुम उन्हीं में से एक रहे, तुम उन्हीं में से एक रहे।

सुनो एक बात कहूं, तुम्हारे लिए मुझे कभी कोई भूमिका नहीं लिखनी पड़ी। मेरी चुप आंखें, मेरे अधूरे प्रश्न, मेरे भीतर की अनगिन परतें, सब तुम्हें पहले से ज्ञात थी। शायद इसलिए तुम्हें याद करना भी याद करना नहीं लगता। वह तो वैसा है जैसे नदी को अपने स्रोत का स्मरण हो, जैसे आकाश को अपने विस्तार का। मैं जब भी अपने भीतर उतरती हूं, एक शांत उजली रेखा दूर तक जाती दिखाई देती है और उसके अंतिम छोर पर कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि वहां खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो बस एक गहन आत्मीयता रहती है, जो शब्दों से बड़ी है, व्याख्याओं से बड़ी है और उन सभी प्रमाणों से बड़ी जिनकी दुनिया मांग करती है। मैं उसी को प्रेम कहती हूं, जो बांह पकड़ कर

नहीं हृदय में घर बनाकर रहता है, जो दिखाई कम देता है पर जीवन की हर ऋतु में अंतर के दीप को बुझने नहीं देता। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन और इस गीत को आवाज दी है साधना सरगम और उदित नारायण ने। आइए सुनते हैं ये गीत और इस गीत के बाद हम और भी बातें करेंगे।

और अगला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है वो सात दिन।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद मीना होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल ही तो है, आवाज है मन्ना डे साहब की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया की राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाई मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है रात के 3:11 और 6 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जानते हैं, वादे तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वादों से नहीं बल्कि निभाने से पहचाना जाता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं, जैसा कि ये गीत।

दोस्तों, जिंदगी का हर मोड़ अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं तो कुछ रास्ते हमें खुद से मिलवा देते हैं। कभी किसी मोड़ पर कोई अपना साथ चलने लगता है तो कभी कोई याद बनकर पीछे छूट जाता है, लेकिन सफर रुकता नहीं है बल्कि कदम आगे बढ़ते रहते हैं।

जानते हैं, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से जीते जाते हैं। ऐसी ही मीठी भावनाओं को सुरों में पिरोया है संगीतकार सलील चौधरी ने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों में। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की सुमधुर आवाजों से सजा ये

सदाबहार नगमा आज भी प्रेम की मासूमियत को उतनी ही खूबसूरती से बयां करता है। आइए सुनते हैं फिल्म माया का ये अमर गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव

श्रोताओं, अब पेश है एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसमें प्रेम की गहराई, समर्पण की मिठास और जीवन भर साथ निभाने का अटूट विश्वास झलकता है। राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया ये गीत आज भी हर प्रेम करने वाले दिल की धड़कन बनकर गूंजता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:34 और 58 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत हमने लिया है फिल्म सूरज से, जिसे गाए हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। क्षमा कीजिए, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को हमराही कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।

प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने श्री वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डेन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ने अपना पदक खाता भी खोल दिया है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में बाय मिलने से सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली है। लॉन बॉल्स में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन अपने दोनों मुकाबले जीत लिए। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है सुबह के 4:11:17 अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसमें कभी संघर्ष आते हैं तो कभी रास्ता सीधा नजर आता है। कहते भी है ना कि जब तक पत्थर पर भी हथौड़ा नहीं पड़ता ना, तो भगवान की मूर्ति नहीं बन पाता। जब उस पर चोट लगती है तभी वो भगवान की मूर्ति बन पाता है। इसी तरह इंसान भी जब संघर्ष करता है ना, तो उसके अच्छे दिन जरूर आते हैं, लेकिन अगर अपने का साथ हो तो और भी सफर आसान हो जाता है।

जानते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं रहती? क्योंकि दोस्तों, हम ना दूसरों की शिकायतें करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें। लेकिन जिस दिन हम अपनी ये सोच बदल देंगे ना, उन्हें सुधारने के बजाय अगर हम खुद को सुधारेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।

कश्मीरी का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:31 और 8 सेकंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी मीना चौहान के साथ।

जानते हैं दोस्तों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, खुशनसीब वो इंसान नहीं होता जिसे सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि खुशनसीब वो इंसान होता है जो हर चीज को अपनी मेहनत और लगन से अच्छा बनाता है।

जानते हैं दोस्तों, अगर जिंदगी में खुद पर भरोसा हो ना, तो हर मुश्किल छोटी लगती है। अगर भरोसा ना हो, तो आसान चीज भी नामुमकिन सी लगती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और खुद पर भरोसा रखिए।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार और 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले ढाई महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की

0: के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिका की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में डॉ सिंह ने बताया कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन संबंधित पटना में संबंधित घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और उसका इलाज जारी है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपशिष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया है। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्यायसंगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। 74 देशों के खिलाड़ी इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, "Government's foremost responsibility was to ensure that students should not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately." He said he knows that paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents.
2: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the public exam.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड भोर सुहाने कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।
1: हंसो मत, बोलो

पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता, बल्कि वो सदैव नए फूलों के खिलने का निर्माण करता रहता है। दोस्तों, इसी तरह हमारा जीवन भी है।

हमारे जीवन में कभी मुश्किलें आती हैं, कभी दुख आते हैं और कभी सुख आते हैं। हमें भी नई चीजों की ओर बढ़ना चाहिए और पिछली चीजें जो हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।

सिर्फ ज़रूरत पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपनों के लिए मगर कुछ खुशियां औरों के नाम करना भी जिंदगी है। सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।